सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियाँ और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप जानेंगे साथियों हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए, जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और

देश के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बन, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: किसान भाई बोन गीता ऐसो पुरुन अनास गीताते पड़ा सूटा उम्मीद करा किसे बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी माध्यम थे की ये बातें आपने गमी होंगा। आपने हमारो आजनो कार्यक्रम ने अन्य सलवा और गीत संगीत केवल आ गया इन बारे में आप राय सुझाव आली शको आपने अना पता माते
1: होवे भाई इन बोनो लकीलो अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमर अना फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अनास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारे बच्चों के लिए विषय को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं वो बच्चों के जीवन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विषय रिश्तों से जुड़ा हुआ है, आदतों से जुड़ा हुआ है और जीवन की छोटी छोटी बातों से भी इसमें सीख छिपी हुई है। बात कर रहे हैं साथियों दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दोस्ती यह सिर्फ साथ घूमने, बातें करने या हंसने का नाम नहीं होता, बल्कि सच्ची दोस्ती वह होती है साथियों जहां अपनापन हो, समझ हो, भरोसा हो और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी भी हो। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि विषय आज का बहुत ही अनोखा है तो इस विषय को और भी रोचक बनाने के लिए श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमारा जुड़ रहा है उस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बात कर रहे हैं दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी को लेकर। हम देखते हैं साथियों कि हमारे बचपन की दोस्ती बहुत मासूम होती है। बच्चे जो होते हैं वो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, धीरे धीरे ये दोस्ती उन्हें जीवन की सबसे बड़ी बातें भी सिखाती है कि कैसे किसी की भावनाओं को समझना है, कैसे साथ निभाना है और कैसे सही समय पर सही सलाह देकर अपने दोस्तों को गलत रास्ते पर जाने से बचाना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सिर्फ मजाक करते हैं दोस्ती में, गुस्से या छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं और सामने वाले की परेशानी समझ ही नहीं पाते। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे भी अपने दोस्तों का दर्द समझ लेते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में रेडियो नाटक रहने वाला है। इस कहानी में साथियों दो सहेलियां हैं, नैना और कविता। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। एक बहुत जल्दी नाराज हो जाती है और बातों को दिल पर ले लेती है, जबकि जो दूसरी है वो समझदारी से रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में आइए साथियों हम सुनते हैं दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी की भावना को।
1: कविता, आज मुझे बहुत बुरा लगा। सुबह से तो ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं है।
2: नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं थोड़ा परेशान थी इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी दोस्ती बदल गई है। कभी कभी इंसान अपने मन की उलझनों में इतना खो जाता है कि वह सामान्य तरीके से बात नहीं कर पाता।
1: लेकिन कविता, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं सोचती रही कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया।
2: अरे नहीं, अगर दोस्ती सच्ची हो तो हमें हर बार तुरंत गलत नहीं समझना चाहिए, पहले सामने वाले की स्थिति भी समझने की कोशिश करनी चाहिए नैना।
1: शायद मैं जल्दी सोचने लगती हूँ, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हूँ, फिर मन खराब हो जाता है।
2: ऐसा कई बार होता है, लेकिन दोस्ती सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं सामने वाले की स्थिति भी समझनी पड़ती है। अगर हम हर बात पर नाराज हो जाएं, तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं नैना।
1: मतलब कविता, दोस्ती में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता।
2: अरे पागल, ऐसा नहीं है। प्यार जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी है, तभी तो दोस्ती लंबे समय तक टिकती है।
1: कविता, आज टीचर बता रही थी कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो गलत काम में साथ न दें। पहले मुझे लगता था कि दोस्ती का मतलब हर बात में साथ देना है।
2: नहीं नैना, सच्चा दोस्त वो होता है जो जरूरत पड़ने पर रोक भी सके। अगर दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है और हम चुप रहे तो वो कोई दोस्ती नहीं होती, लापरवाही होती है।
1: मतलब जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं दोस्त की भी होती है।
2: हाँ, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ रहना नहीं होता है, बल्कि मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाना भी होता है।
1: अच्छा, एक बात बताओ कविता, कल जब तूने मुझे ज्यादा मोबाइल चलाने से रोका था तब मुझे लगा था कि तू मुझे रोक टोक कर रही है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि तू मेरी चिंता कर रही थी।
2: हाँ, क्यों ना करूँ भला। अगर हम अपने दोस्त की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कई बार प्यार जिम्मेदारी और समझाने के रूप में आता है, डांट के रूप में नहीं आता।
1: हाँ कविता, अब मुझे लग रहा है कि मैंने कई बार बिना समझे तुझे गलत समझ लिया।
2: कोई बात नहीं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझना सीखते हैं, और मैं तुम्हें समझती हूँ।
1: आज मैं भी बहुत परेशान हूँ।
2: क्यों, क्या हुआ तुम्हें?
1: आज घर में मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब तू मेरे साथ बैठी और मुझे संभाला तब मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती में कितनी बड़ी ताकत होती है।
2: हाँ, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती है, असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। और वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल समय में अपने दोस्त को छोड़कर चला जाए।
1: हाँ, तभी तो तूने बिना सवाल किए मेरा साथ दिया

0: ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी।
1: क्योंकि कई बार इंसान को सवाल से ज्यादा जरूरत होती है साथ की, और अगर मैं साथ न देकर तुमसे सवाल करती तो तुम भी मुझ पर गुस्सा कर बैठती।
0: अब मुझे समझ आ रहा है कि दोस्ती सिर्फ समय बिताने का रिश्ता नहीं है, इसमें भरोसा, समझ और जिम्मेदारी भी होती है।
1: बिल्कुल, और जब दोस्ती में सम्मान और समझ बना रहता है तब वह रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, नैना।
0: हाँ कविता, अब मैं कोशिश करूँगी कि हर बात पर तुरंत नाराज न हो जाऊँ और पहले दोस्ती की स्थिति को समझ लूँ।
1: यही समझदारी दोस्ती को खूबसूरत बनाती है, इसलिए अगर तुम ये बात समझ गई हो तो अब से मुझे जरूर समझना।
0: हाँ बिल्कुल कविता, आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची दोस्ती वही है जहाँ हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, गलतियों पर संभाले और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें।
1: सही कहा तुमने, जब दोस्ती में जिम्मेदारी जुड़ जाती है तब वह रिश्ता रिश्ता नहीं रहता बल्कि जीवन की ताकत बन जाता है।
0: अब मैं दोस्ती को सिर्फ मजे का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास और समझ का रिश्ता मानूंगी
1: और यहीं से हमारी कहानी सबसे बड़ी सीख देती है कि दोस्ती में प्यार रहे, समझदारी के साथ रहे, जिम्मेदारी जुड़ जाए, रिश्ता जीवन भर मुस्कुराए। साथियों, जैसा कि अभी हमने नैना और कविता की दोस्ती को जाना कि किस प्रकार से नैना जो है वो बहुत भावुक और जल्दी नाराज होने वाली लड़की है, लेकिन कविता शांत, समझदार और रिश्तों को संभालने वाली है। दोस्तों, इन दोनों की बातों से हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझ पाए हैं कि किस प्रकार से दोस्ती हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा गया है कि दोस्ती में प्यार रहे, समझदारी साथ रहे, जिम्मेदारी जुड़ जाए और रिश्ता जीवन भर मुस्कुराए। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दोस्ती जो है वो जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन हर रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसमें समझ, धैर्य और जिम्मेदारी जुड़ी हुई हो। आज की इन दोनों सहेलियों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ हमारे साथ हंसे, बल्कि वह भी है जो हमें समझे, संभाले और जरूरत पड़ने पर सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, आज के समय में लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बिना पूरी बात समझे रिश्तों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें और रिश्तों को समय दें तो दोस्ती और भी मजबूत हो सकती है। साथियों, इसलिए याद रखिए, दोस्ती में सिर्फ साथ नहीं समझ भी जरूरी है, सिर्फ हंसी नहीं जिम्मेदारी भी जरूरी है, और सिर्फ बातें नहीं भरोसा भी जरूरी है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाना चाहूंगी।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा विशेष कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही दोस्ती को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि रिश्ते बनाना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना समझदारी मांगता है। दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो सिर्फ साथ घूमने या बातें करने से मजबूत नहीं होने वाला, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतफहमियों को धैर्य से सुलझाने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से मजबूत बनेगा। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आपको छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थे क्या आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का
2: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
3: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
3: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
2: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना वागड़ रेडियो 90.8 FM और कार्यक्रम युवाओं की आवाज
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज का विषय रहेगा आपसे बातचीत का, स्वयं को बेहतर बनाने का हम अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि श्रोता साथियों, हम मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेने और समय बिताने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि निरंतर सीखने, बदलने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए भी हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है कशिश, लेकिन उन संभावनाओं को पहचान कर उन्हें विकसित करना ही असली

0: सफलता कहलाती है। आज हम देखते हैं कि तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जो स्वयं को सुधारने का अभ्यास करता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं को बेहतर बनाना कोई एक दिन का कार्य नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक सतत यात्रा है जिसमें धैर्य, मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ जागृति जी,
0: कहा गया है कि हर दिन खुद को निखारो श्रोताओं, जीवन को सफलता अपने आप ही मिल जाएगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हमारी युवा साथियों से बातें तो ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को शुरुआत में पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा दे पहले श्रोताओं को।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में विषय के साथ में। जैसा कि गीत से पहले विषय बताया था, साथियों की बात कर रहे हैं कि स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जागृति जी आपने बताया था हमारे युवाओं को कि हमारा जो जीवन है वो सीखने, समझने और निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: इस संसार में दोस्तों कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान के भीतर कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है ना जागृति जी, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास ही साथियों सफलता, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन जीने की असली कुंजी होती है।
1: और हम देखते हैं कि कशिश, आज के समय में बहुत से युवा दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है श्रोताओं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है।
0: बिल्कुल।
1: स्वयं को बेहतर बनाने का पहला कदम है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है तभी वो आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को मजबूत बनाए रखती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश कि स्वयं को बेहतर बनाने का अर्थ केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखना नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहारों और आदतों और कार्यों में भी सुधार लाना होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तभी उसका वास्तविक विकास भी होता है। जो लोग हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं वे स्वयं की कमियों को भी कभी नहीं पहचान पाते, लेकिन जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर दिशा देने लगता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। और हम देखते हैं कि आज के युवाओं का जो समय है वो प्रतियोगिता का समय है।
1: बिल्कुल।
0: हर युवा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई अच्छा करियर बनाना चाहता है तो कोई समाज में पहचान बनाना चाहता है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई ऐसे भी हैं जो मानसिक शांति और खुशहाल जीवन की तलाश में हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी उपलब्धियों की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वो है स्वयं से। यदि हम खुद बेहतर बनना सीख जाएं साथियों तो वह जीवन की हर चुनौती का सामना हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं को बेहतर बनाना केवल बाहरी व्यक्तित्व को बदलना नहीं होता दोस्तों, बल्कि अपने विचारों के साथ साथ अपनी आदतों, अपने व्यवहार और सोच को सकारात्मक दिशा देना भी होता है।
1: जी हाँ।
0: हम कह सकते हैं कि स्वयं को बेहतर बनाने का मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना।
1: बिल्कुल।
0: नई नई बातें सीखना जागृति जी, अच्छी आदतें अपनाना, नकारात्मक सोच को बदलना और अपने व्यक्तित्व को निखारना। दोस्तों ये वैसे तो एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
1: जी हाँ।
0: देखते हैं कि जैसे हम पौधे को रोज पानी देते हैं साथियों और उसे पानी की आवश्यकता भी होती है, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व को भी रोज अभ्यास और सुधार की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल कशिश। और इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छी आदतें ही उज्जवल भविष्य की नींव बनती है। श्रोता साथियों, समय का सही उपयोग भी स्वयं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी जी।
1: जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया और आलस्य आज युवाओं की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है।
0: बिल्कुल।
1: यदि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा तो उसका जीवन अवश्य बदल सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है।
0: बिल्कुल।
1: आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच का भी होना बहुत जरूरी है। कशिश, नकारात्मक सोच व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है।
0: जी जी।
1: जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा सोचता है वो कठिनाइयों में भी अवसर खोज लेता है। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा भरती है।
0: बिल्कुल।
1: और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना गलत है। असफलता हमें सीख देती है कि हमें और बेहतर बनने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी चली रही हैं, ये बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना साथियों को यहाँ पर यह गीत सुनवाएं हम।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, स्वयं को बेहतर बनाने का हम अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं, बातें काफी अच्छी चल रही थी। इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है, तो ही सफलता हमारा सम्मान करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच होना जरूरी है। अच्छे लोगों की संगति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि जैसा वातावरण होता है व्यक्ति वैसा ही बनता जाता है। यदि हम मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे कशिश, तो हमारे अंदर भी वही गुण विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अगर गलत संगति व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है, इसलिए जीवन में अच्छे मित्रों और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों, जीवन में बड़े परिवर्तन कभी अचानक नहीं आएंगे। आपको ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जैसे कि समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना, रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करना और अपनी बातों में विनम्रता रखना। दोस्तों, कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि इसी के साथ ही असफलताओं से सीखना भी एक अच्छी आदत है। दोस्तों, बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो असफलता के बाद टूट जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति साथियों अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है, और हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि धैर्य, मेहनत, अनुभव, आत्मविश्वास जैसे गुण, यदि दोस्तों इंसान गिरकर फिर उठना सीख जाए तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जीवन में विनम्रता और व्यवहार कुशलता भी व्यक्ति को महान बनाती है। केवल ज्ञान या पैसा ही व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार उसे सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, बड़ों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहता है, वही सच्चे अर्थों में बेहतर इंसान कहलाता है। अच्छा व्यवहार समाज में प्रेम और सम्मान बढ़ाता है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाना कितना जरूरी है। जैसे कि कशिश, एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में कमजोर था और हर समय अपनी किस्मत को दोष देता रहता था।
1: बिल्कुल,
0: एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक पौधा दिया और कहा कि इसे प्रतिदिन पानी देना और इसकी देखभाल करना। अर्जुन ने धीरे धीरे उस पौधे की देखभाल शुरू की। कुछ महीनों बाद वो पौधा एक सुंदर वृक्ष बन गया। तब शिक्षक ने कहा, जिस तरह इस पौधे को रोज देखभाल की जरूरत थी, उसी तरह इंसान को भी खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: उस दिन अर्जुन को अपनी गलती समझ आई और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। श्रोताओं, कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सफल व्यक्ति बन गया। इसलिए कहा गया है कि रोज का छोटा सुधार भविष्य का बहुत बड़ा चमत्कार बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, बहुत ही प्यारी सी कहानी आपने हमारे युवा साथियों को बताई। इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाने का मतलब केवल पढ़ाई या करियर नहीं होता, बल्कि इसमें अच्छे स्वास्थ्य का होना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम करने को शामिल करना चाहिए, पौष्टिक भोजन आपको खाना है, पर्याप्त नींद लेनी है, और साथ ही हमारे युवा साथी योग और ध्यान भी कर सकते हैं। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, साथ ही नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति को भी आप जारी रखें।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सीखना कभी हमारे जीवन में बंद तो नहीं होना चाहिए। जागृति जी, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, हम देखते हैं कि उसका विकास रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में नई भाषा, नई कला, नई तकनीक या फिर कोई नया कौशल हो साथियों, हर नई चीज इंसान को और बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
0: बिल्कुल,
1: आपसे कहना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे जरूर होती है। कई बार तो तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रयास करना ही छोड़ दिया जाए।
0: जी हाँ
1: साथियों, जैसा कि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व को निखरने में भी समय लगता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वयं को बेहतर बनाने का अर्थ ये भी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गलती करना गलत नहीं है श्रोताओं, लेकिन उसे बार बार दोहराना गलत है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। महान लोग भी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे।
1: बिल्कुल,
0: यदि हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा तो पूरा समाज बेहतर बन सकता है। एक अच्छा इंसान अपने परिवार, समाज और देश के लिए प्रेरणा बनता है। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत, करुणा और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं को बेहतर बनाना जीवन की सबसे सुंदर आवश्यक प्रक्रिया है।
1: जी हाँ।
0: कोई प्रतियोगिता नहीं है श्रोताओं, हमें दूसरों से बेहतर बनना है, बल्कि हमें कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना है। जब व्यक्ति प्रतिदिन सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का अभ्यास करता है, तब उसका जीवन सफलता, सम्मान और खुशियों से भर जाता है। कशिश
1: जी,
0: हमें
1: हाँ।
0: कभी ये नहीं सोचना चाहिए श्रोताओं कि अब सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि सीखने और सुधारने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं युवा साथियों कि हमें अपने जीवन को केवल दूसरों को प्रभावित करने में नहीं बिताना है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व और कार्यों से बने। श्रोता साथियों, हर दिन आप खुद से ये कहिए कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या सीख सकता हूँ,
0: बिल्कुल,
1: मैं बदल सकता हूँ और मैं बेहतर बन सकता हूँ।
0: जी हाँ।
1: ऐसे याद रखिए श्रोता साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आपको दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है दोस्तों। ये यात्रा इंसान को मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने भीतर छिपी संभावनाओं को युवा साथियों पहचानिए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दीजिए और हर दिन खुद को एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: जो इंसान स्वयं को बदलना सीख जाता है वही असल में अपने जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है और आशा भी है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि गांव केवल मिट्टी खेत और घरों का नाम नहीं होता, बल्कि गांव एक जीवित समाज होता है जहां हर व्यक्ति का सपना संघर्ष और उम्मीद जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव की पंचायत और वहां की जनता एक साथ मिलकर काम करती है अंजलि, तब विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धरातल पर दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकता होती है। यदि पंचायत ईमानदारी से काम करे और जनता जागरूक होकर उसका साथ दे तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव केवल रहने की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, मेहनत और सामूहिक जीवन की पहचान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी गांव का विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। गांव तब आगे बढ़ता है जब वहाँ की पंचायत और जनता मिलकर काम करती है।
0: जी हाँ।
1: पंचायत और जनता का रिश्ता केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए श्रोता साथियों, बल्कि विकास, सहयोग और जिम्मेदारी का रिश्ता होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं जागृति जी कि गांव की हर समस्या का समाधान केवल सरकार करेगी।
0: जी हाँ।
1: वहीं कई बार पंचायत ये मान लेती है कि जनता सहयोग नहीं करती। इसी दूरी के कारण हम देखते हैं कि गांव की छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब पंचायत और जनता एक साथ खड़ी होती है तब गांव में ऐसे बदलाव आते हैं जो वर्षों तक समाज को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि हम बात करने वाले हैं पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आज देश के कई गांव ऐसे हैं जहां पंचायत और जनता ने मिलकर शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अद्भुत बदलाव किए हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये साबित करता है कि बदलाव लाने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि जनता की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायत गांव की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरकार होती है। श्रोता, गांव की सड़कें, पानी, बिजली, सफाई, शिक्षा और अन्य योजनाओं की जिम्मेदारी पंचायत पर होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अकेली पंचायत सब कुछ नहीं कर सकती अंजलि। जब तक जनता उसका सहयोग नहीं करती तब तक योजनाएं सफल नहीं हो पाती।
1: जी।
0: यदि पंचायत और जनता दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे तो गाँव का हर काम आसान हो सकता है। पंचायत दिशा देती है और जनता उस दिशा को ताकत देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चा स्वराज केवल अधिकार मांगने का नाम नहीं है बल्कि मिलकर जिम्मेदारी निभाने का नाम है।
0: बिल्कुल।
1: जब गांव का हर व्यक्ति अपने गांव को अपना परिवार समझने लगे और पंचायत जनता की आवाज को सम्मान दे तब विकास केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: पंचायत गांव की सबसे नजदीकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। गांव की जरूरतों समस्याओं को पंचायत सबसे बेहतर तरीके से समझ सकती है।
0: जी हाँ।
1: सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी योजनाएं, जल संरक्षण, पशुपालन और सामाजिक सुधार जैसे कई कार्य जो है वो पंचायत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंचायत अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। यदि जनता साथ न दे तो नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, केवल शिकायतें ही रह जाती हैं और विकास अधूरा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पंचायत और जनता दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। अगर ये एक दूसरे के विरोधी होंगे तो गांव का विकास संभव नहीं है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कहा भी गया है कि पंचायत की शक्ति तभी बढ़ती है जब जनता जिम्मेदारी से जुड़ती है। आज भी कई गांव में गंदगी और खुले में कचरा फेंकने की समस्या हम देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि पंचायत सफाई अभियान चलाए और जनता भी जागरूक होकर उसमें भाग ले तो पूरा के पूरा गाँव स्वच्छ बन सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखे, कचरा इधर उधर न फेंके और पंचायत नियमित सफाई करवाए तो बीमारियां कम होंगी और गांव सुंदर बनेगा। स्वच्छ गांव केवल देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि वहां रहने वाले लोग भी स्वस्थ रहते हैं।
1: जी।
0: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि पानी आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कई गाँव में अंजलि गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। यदि पंचायत तालाबों की सफाई करवाए, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करे और जनता पानी बचाने की आदत अपनाए तो जल संकट भी कम हो सकता है। गांव के लोग यदि मिलकर पेड़ लगाएंगे और जल स्रोतों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव की असली ताकत वहां के लोग ही होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि जनता जागरूक हो, जिम्मेदारी समझे तो गांव तेजी से बदल सकता है। जनता की भागीदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि गांव की असली समस्या जनता ही जानती है।
0: बिल्कुल।
1: विकास कार्यों की निगरानी जनता कर सकती है। सफाई, जल संरक्षण और शिक्षा जैसे जो कार्य हैं, वो सामूहिक रूप से सफल हो सकते हैं।

0: पंचायत को सही सुझाव मिलते हैं, भ्रष्टाचार और लापरवाही कम होती है, लोगों में अपनापन और जिम्मेदारी बढ़ती है। श्रोता साथियों, जब गांव का हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि यह मेरा गांव है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तभी सच्चा विकास संभव होता है।
1: जी हाँ,
0: आज कई गांवों में गंदगी, प्लास्टिक कचरा, खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या बढ़ रही है। केवल सफाई कर्मचारी रखने से गांव की साफ सफाई नहीं होगी, इसके लिए लोगों की सोच भी बदलनी जरूरी है। यदि पंचायत सफाई अभियान चलाए तो जनता उसका सहयोग करे तो गांव स्वच्छ और स्वस्थ बना रहेगा।
1: जी हाँ,
0: हर मोहल्ले में सफाई की जिम्मेदारी तय हो, कचरा इधर उधर फेंकने पर रोक लगे, प्लास्टिक का कम उपयोग हो, बच्चे और युवा सफाई अभियान में शामिल हो, सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई हो, स्वच्छ गांव में बीमारियां कम होती हैं श्रोता साथियों, और लोगों का जीवन बेहतर बन पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पंचायत और गांव की क्या भूमिका होती है एक गांव में, तो श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि जब गांव की महिलाएं मजबूत बनती है तभी समाज मजबूत होता है। अंजलि, पंचायत महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षा योजनाएं चला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं जनता महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार देकर बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि महिलाओं को निर्णय लेने का मौका मिलेगा तो गांव के विकास की गति और तेज हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहा गया है कि नारी का सम्मान बढ़ेगा तो गांव अपने आप विकास की राह देखेगा। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं गांव में, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,
2: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले बहुत अच्छी बातें चल रही थी कि किस तरीके से पंचायत का महत्व होता है और उसमें जनता की भागीदारी क्यों जरूरी है, यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज गाँवों में पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कुएं सूख रहे हैं, तालाब जो है वो खत्म हो रहे हैं, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। यदि पंचायत और जनता मिलकर प्रयास करे तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: मिलकर किए जा सकने वाले अगर कार्यों के बारे में बात करें जागृति जी, तो श्रोता साथियों, वर्षा जल संचयन हमें करना है, पुराने तालाबों की सफाई हमें करनी है, पेड़ लगाना है, पानी की बर्बादी को रोकना है और खेतों में पानी बचाने वाली तकनीक अपनानी है।
1: जी हाँ,
0: जब गाँव मिलकर पानी बचाने का संकल्प लेता है तब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। कहना चाहेंगे कि कई बार गांव में योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसका कारण जानकारी की कमी और निगरानी का अभाव होता है। यदि पंचायत और जनता जागरूक रहे तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि नशा आज युवाओं को कमजोर बना रहा है। यदि पंचायत नशा विरोधी अभियान चलाए और जनता उसका समर्थन करे तो गांव को नशे से भी मुक्त बनाया जा सकता है। गांव की असली ताकत उसकी एकता होती है। जब लोग जाति धर्म और छोटे छोटे विवादों को भूलकर एक साथ काम करते हैं तब समाज में शांति और विकास दोनों आते हैं। श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि पंचायत यदि निष्पक्ष होकर निर्णय ले और जनता एक दूसरे का सम्मान करे तो गांव में झगड़े कम होंगे और प्रेम बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: आज का समय तकनीक का है। पंचायत यदि डिजिटल सेवाएं शुरू करे और जनता उन्हें सीखने का प्रयास करे तो गांव भी आधुनिक बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि पंचायत और जनता यदि ईमानदारी, सहयोग और जागरूकता के साथ काम करेंगे तो गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और भाईचारे जैसे क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: सच्चा विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं आता श्रोताओं, बल्कि जनता की भागीदारी से आता है। जब हर व्यक्ति ये सोच ले अंजलि कि गांव मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तब विकास की राह आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि पंचायत और जनता एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामे, क्योंकि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं आता श्रोताओं, बल्कि पूरे समाज के मिलकर प्रयास करने से आता है। गांव की शक्ति गांव के लोगों में छिपी होती है। जब पंचायत और जनता एक हो जाते हैं तब मिट्टी भी सोना बन जाती है श्रोताओं, और सपने भी हकीकत में बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, आज समाज में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं। जाति, राजनीति और व्यक्तिगत झगड़े गांव की एकता को कमजोर करते हैं। पंचायत और जनता मिलकर आपसी संवाद बढ़ा सकते हैं, सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और विवादों को बातचीत से सुलझा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एकजुट गांव हर संकट का सामना आसानी से कर सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज केवल सरकार बदलने का नाम नहीं है, सच्चा स्वराज तब होगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, लोग जागरूक होंगे, पंचायत ईमानदारी से काम करेगी, जनता जिम्मेदारी निभाएगी, महिलाएं और युवा जो है वो आगे बढ़ेंगे, विकास में सबकी भागीदारी होगी। जहां जनता केवल मांग करने वाली नहीं बल्कि सहयोग करने वाली बन जाए, वही सच्चा स्वराज दिखाई देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि पंचायत और जनता जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब केवल गांव बदलता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है। एकता, मेहनत और जागरूकता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छता हो, शिक्षा हो या विकास, श्रोताओं, हर बदलाव की शुरुआत मिलकर उठाए गए छोटे कदमों से ही होती है। इसलिए हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाएं जहां विकास भी हो, सम्मान भी हो और हर चेहरे पर मुस्कान भी हो।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब लोग मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी की भावना से आगे बढ़ते हैं तब गाँव मजबूत होंगे, समाज जागरूक बनेगा और सच्चे अर्थों में स्वराज का सपना पूरा होगा। क्योंकि विकास तब नहीं आता जब लोग काम करें, विकास तब आता है जब पूरा गांव एक परिवार बनकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: श्रोताओं इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी
1: जैसा कि दोस्तों, हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बातें हमारी आपसे होती हैं स्वास्थ्य प्रद विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। मनीषा, बात कर रहे हैं रोज सुबह टहलने के फायदों को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है।
0: जी,
1: और अगर सुबह के समय टहलने की बात करें तो वो तो काफी लाभदायक है श्रोता साथियों। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि सुबह का समय इतना खास क्यों होता है टहलने के लिए, साथ ही सुबह की सैर हमारे शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ बनाती है। ऐसे ही ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करने वाले हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रोज सुबह टहलने के फायदे क्या होते हैं। कोशिश हम देखते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर का उपयोग करना और अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। ऐसे समय में यदि कोई सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकता है, वो है श्रोता साथियों रोज सुबह टहलना।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: कशिश, हम देखते हैं कि सुबह का समय प्रकृति का सबसे सुंदर और शांत समय माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, हवा ताजी होती है और चारों ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज हमारे मन में आनंद देती है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन सुबह कुछ समय टहलने की आदत डाले तो उसका जीवन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि सुबह की सैर केवल शरीर को ही फिट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का भी एक अच्छा तरीका है। डॉक्टर भी कई बार श्रोता साथियों बीमारी से बचने के लिए रोज सुबह टहलने की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह एक ऐसा व्यायाम है श्रोता साथियों जिसे हर उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं रोज सुबह टहलने की आदत को लेकर,
0: जी
1: तो दोस्तों वैसे तो ये विषय काफी साधारण दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो ये हमारे शरीर, मन और पूरे जीवन को बदल सकता है मनीषा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन समय निकालना उनके लिए वे मुश्किल समझते हैं। कई लोग श्रोता साथियों जिम और कह सकते हैं कि इलाज के पीछे भागते रहते हैं, जबकि आपको बताएं तो अच्छी सेहत की शुरुआत बहुत ही आसान आदतों से ही शुरू होती है। और उन्हीं में से एक आदत सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से टहलने की आदत भी है। श्रोता साथियों, सुबह की जो ताजी हवा होती है, पक्षियों की आवाज होती है, हल्की धूप और शांत वातावरण हमारे शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा देते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी कारण से दोस्तों डॉक्टर बुजुर्गों को और बच्चों को भी हमेशा सुबह की सैर को स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताते हैं। हम देखते हैं कि सुबह का समय पूरे दिन का सबसे शांत और शुद्ध समय माना जाता है। इस समय श्रोता साथियों वातावरण काफी शुद्ध रहता है और प्रदूषण भी कम रहता है, साथ ही जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। हम देखते हैं मनीषा कि जब हम सुबह टहलते हैं तो शरीर को ताजी हवा मिलती है, जिससे फेफड़े भी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर निरंतर चलने फिरने के लिए बना है। यदि शरीर को पर्याप्त गतिविधियां नहीं मिली तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: आजकल कशिश हम देखते हैं कि मशीनों और आधुनिक साधनों ने लोगों की मेहनत कम कर दी है, जिसके कारण शारीरिक सक्रियता घट गई है। ऐसे में सुबह की सैर शरीर को सक्रिय बनाए रखने में भी मदद करती है। साथ ही हम देखते हैं कि सुबह टहलने से रक्त संचार तेज होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। श्रोता साथियों, ये आदत व्यक्ति को दिन भर चुस्त और फुर्तीला बनाकर रखती है। साथ ही कशिश हम देखते हैं कि सुबह का वातावरण अन्य समय की तुलना में अधिक स्वच्छ और शांत होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो फेफड़े और हृदय के लिए भी लाभकारी होती है। श्रोता साथियों, यही कारण है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अमृत समान मानी गई है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से सुबह की सैर करने के ढेर सारे फायदे होते हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हमारी स्वास्थ्यप्रद बातों की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले हम जान रहे थे कि सुबह का समय काफी खास होता है टहलने के लिए।
1: जी।
0: और गीत से पहले ये भी जान पाए थे कि सुबह का समय जब हम टहलते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक मिलती है। इसी के साथ अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो सुबह की सैर केवल शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी तरोताजा करती है। मनीषा, ये समय आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और साथ ही नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए जरूरी माना जाता है।
1: जी हाँ।
0: हम देखें तो गांव में तो अक्सर लोग सूर्योदय से पहले ही उठकर खेतों की ओर निकल जाते हैं श्रोता साथियों। वे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: देख सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका प्रकृति से जुड़ा रहना और नियमित चलना फिरना।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम देखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन में यह आदत हमारे अंदर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी को अपने जीवन शैली में सुबह के सैर की जो आदत है उसे जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह टहलना शरीर को चुस्त और सक्रिय बनाता है। जब हम चलते हैं साथियों, तो शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में नई ऊर्जा आती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि अगर हम सुबह टहलते हैं या सुबह की सैर करते हैं तो इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह किस प्रकार लाभकारी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, हम देखते हैं कि इससे हमारा तनाव कम होता है।
0: जी हाँ।
1: हमारी सोच है वो सकारात्मक होती है। साथ ही श्रोता साथियों, अवसाद से भी हमें राहत मिलती है। हमारी याददाश्त है वो भी तेज होती है, साथ ही हमारा आत्मविश्वास भी कशिश बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में सुबह की सैर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और पढ़ाई में भी मन लगता है।
0: बिल्कुल।
1: उनकी याददाश्त तेज होती है, पढ़ाई में एकाग्रता की शक्ति है वो भी बढ़ती है, साथ ही आलस्यता कम होती है, मानसिक थकान दूर होती है और परीक्षा का तनाव है वो भी कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जो विद्यार्थी नियमित सुबह टहलते हैं कशिश, वे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथ ही अगर बुजुर्गों की बात करें मनीषा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र में शरीर हमारा कमजोर होने लगता है। ऐसे में साथियों, जोड़ों में दर्द, थकान और सुस्ती जैसी समस्याएं बुजुर्गों में बढ़ जाती है।
1: जी हाँ।
0: अगर वे सैर की आदत को अपनाते हैं तो दोस्तों, ऐसे समय में हल्की सुबह की सैर उनके लिए काफी लाभदायक होगी।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि नियमित चलने से शरीर सक्रिय रहता है और बुजुर्ग खुद को अधिक आत्मनिर्भर भी महसूस कर पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो पार्कों में एक साथ टहलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, इससे उनका अकेलापन दूर होता है। अगर बात करें बच्चों और युवाओं की, तो आज बच्चों का अधिक समय मोबाइल और टीवी में ही बीत रहा है मनीषा। खेलकूद कम होने से उनका शारीरिक विकास इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, यदि बचपन से ही सुबह उठने और टहलने की आदत बच्चों में डाली जाए तो बच्चे अधिक स्वस्थ, अनुशासित बन सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही युवाओं के लिए भी सुबह की सैर जरूरी है, क्योंकि ये उनकी ऊर्जा बढ़ाती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, साथ ही उनका आत्मविश्वास भी मजबूत करती है।
1: जी हाँ कशिश, साथ ही हम देखते हैं कि जब लोग पार्क और खुले स्थानों में टहलने जाते हैं तो उनका प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो महत्व है वो भी वो समझ पाते हैं। इससे पेड़ पौधे और स्वच्छ वातावरण के प्रति भी लोग जागरूक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरियाली से भरे स्थानों में सैर करने से हमारा मन अधिक प्रसन्न होता है। साथ ही कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रोज सुबह टहलना एक अत्यंत लाभकारी आदत है।
0: बिल्कुल।
1: यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और शरीर को संतुलित बनाती है। सुबह की सैर न केवल बीमारियों से बचाव करती है श्रोता साथियों, बल्कि व्यक्ति के विचारों में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। सुबह की सैर किसी महंगे साधन या विशेष स्वास्थ्य की मांग नहीं करती, केवल इच्छा शक्ति और नियमितता की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, यदि हम प्रतिदिन सुबह कुछ समय प्रकृति के बीच टहलने की आदत बना लें तो हमारा जीवन अधिक सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बन सकता है। वास्तव में कशिश, हम देखते हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य का सबसे सरल और प्राकृतिक मंत्र है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सुबह की सैर एक छोटी आदत जरूर है
1: जी,
0: लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। ये शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को अनुशासित बनाती है। ऐसे में दोस्तों, महंगी दवाइयां और इलाज से बेहतर है कि हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, कुछ समय प्रकृति के बीच चलना। ये सभी चीजें हमें नई ऊर्जा देगी।
1: जी हाँ
0: मनीषा, यदि हम अपने परिवार, बच्चों और समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो साथियों, सुबह की सैर को जीवन का हिस्सा हमें बनाना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके, ये हमारी आदतों से बनता है। श्रोता साथियों, रोज सुबह की थोड़ी सी सैर आने वाले समय में हमें कई बीमारियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ,
0: कल से नहीं बल्कि आज से शुरुआत आप करिए। सुबह उठिए, खुली हवा में जाइए, कुछ कदम चलिए और अपने जीवन में नई ताजगी को अपनाइए।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: 001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि शिक्षा जो है वो लो है जो जब जलती है तो अंधियारा जो है वो पल भर में ढल जाता है। ज्ञान से जीवन खिलता है और समाज नया फिर से बनता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, इंसान का जीवन केवल खाने पीने और काम करने तक सीमित नहीं है। एक अच्छा समाज, अच्छे विचार, सही निर्णय और आपसी सम्मान, ये सब मिलकर सामाजिक जीवन बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, सोचिए कि यदि समाज में समझ, जागरूकता और सही गलत की पहचान ही न हो तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? शायद नहीं। तो आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर ही अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है।
1: जी हाँ।
0: समाज में रहने के लिए केवल भोजन, वस्त्र और मकान पर्याप्त नहीं होते हैं साथियों, बल्कि अच्छे विचार, व्यवहार, समझदारी और नैतिकता की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: इन सभी गुणों का विकास केवल शिक्षा के माध्यम से ही होता है। अंजलि जी, शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है।
1: जी हाँ।
0: जिस समाज में शिक्षित लोग अधिक होते हैं साथियों, वहाँ वह समाज अधिक विकसित, जागरूक और संगठित माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा व्यक्ति को अंधविश्वास, भेदभाव, हिंसा और अशिक्षा जैसी समस्याओं से दूर रखती है तथा सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना गया है।
0: जी हाँ।
1: शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है श्रोता साथियों, बल्कि यह इंसान को सोचने, समझने और सही रास्ता चुनने की क्षमता देती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना जीवन सुधारता है, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम जैसा कि जान ही पा रहे हैं कि सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है। तो श्रोता साथियों, सामाजिक जीवन का मतलब है लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, रिश्तों को निभाना, एक दूसरे की मदद करना और समाज में नियमों और जिम्मेदारियों को समझना।
0: जी हाँ।
1: मनीषा, कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, वह परिवार, गांव, मोहल्ले, समाज का हिस्सा होता है। इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों में समझदारी, नैतिकता और जागरूकता हो।
0: बिल्कुल,
1: और यही गुण शिक्षा से आता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सामाजिक जीवन में शिक्षा का योगदान केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के विकास और उत्थान का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा वह साधन है साथियों जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाती है और समाज में समानता, सहयोग और भाईचारे की भावनाओं को विकसित करती है।
1: जी जी।
0: साथ ही हम देखते हैं कि बहुत से लोग शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय जाकर पढ़ाई करना ही समझते हैं, जबकि श्रोता साथियों, शिक्षा का दायरा इससे भी कहीं अधिक व्यापक है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का मानसिक, नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को केवल रोजगार प्राप्त करने योग्य नहीं बनाती है, बल्कि उसे एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षित व्यक्ति समाज के नियमों को समझता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है और अपने कर्तव्यों को भी निभाना जानता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: सच्ची शिक्षा वही है साथियों जो व्यक्ति के अंदर मानवता, समान संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावनाओं को पैदा करें।
1: बिल्कुल, हम कह सकते हैं मनीषा कि अक्सर लोग समझते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल जाकर किताब पढ़ने का नाम है, लेकिन असली शिक्षा वह है जो इंसान को अच्छा नागरिक बनाए, दूसरों का सम्मान करे और सिखाए और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराए।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षा इंसान को ये सिखाती है कि सच और झूठ में फर्क कैसे करें, दूसरों के अधिकारों का सम्मान कैसे करें, समाज में प्रेम और भाईचारा कैसे बढ़ाएं, कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लें।
0: हाँ।
1: यानी कि शिक्षा जीवन को दिशा देने वाली रोशनी है। यही अब बात करें मनीषा कि समाज में जागरूकता लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो श्रोता साथियों, एक शिक्षित समाज ज्यादा जागरूक होता है। शिक्षा लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों समझाती है। अगर बात करें तो शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व समझाती है। वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, गलत परंपरा और अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। कह सकते हैं कि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ लोग समस्याओं का समाधान समझदारी से निकाल पाते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन का अर्थ है समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सहयोग की भावनाओं को जीवित देना। श्रोता साथियों, परिवार, पड़ोसी, मित्र, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज के अन्य लोग हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि समाज में अच्छे संबंध, शासन, सद्भावना बनाए रखें तो हम शिक्षा को अधिक आवश्यक बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा व्यक्ति को यह सिखाती है उसे समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सभ्य बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा व्यक्ति को अच्छे संस्कार और शिष्टाचार सिखाती है। शिक्षित व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना जानता है श्रोता साथियों, वह बातचीत करने का तरीका सीखता है और समाज में मर्यादा भी बनाए रखता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जिस समाज में शिक्षित लोग होते हैं वहाँ झगड़े कम होते हैं और सहयोग की भावनाएं भी अधिक होती हैं। शिक्षा लोगों को हिंसा और गलत रास्ते से दूर रखती है।
1: जी हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में कई बार लोग बिना सोचे समझे पुरानी गलत बातों पर विश्वास करने लगते हैं। जात पात, ऊंच नीच, लड़का लड़की में भेदभाव जैसी समस्याएं इस सोच का परिणाम है। शिक्षा इंसान की सोच बदलती है, वह सिखाती है कि सभी इंसान बराबर है। जब समाज शिक्षित होता है श्रोता साथियों, तब बाल विवाह कम होते हैं, दहेज जैसी कुरीतियों का विरोध होता है, महिलाओं को सम्मान मिलता है और गरीब और कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। इस प्रकार शिक्षा समाज को इंसानियत की राह पर चलाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यदि पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।
0: जी हाँ,
1: महिलाओं की शिक्षा समाज के विकास की सबसे बड़ी कुंजी मानी गई है। एक महिला शिक्षित होती है तो वो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती है, अपने अधिकार समझती है, समाज में आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। आज गांवों और शहरों में कई महिलाएं मनीषा ऐसी हैं जो शिक्षा के बल पर शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी, उद्यमी बन रही है। इससे समाज में नई सोच पैदा हो रही है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पा रहे हैं कि सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, जिसके माध्यम से हम ढेर सारी बातों को जान पाए कि किस तरीके से अंधविश्वास भेदभाव को कम करती है शिक्षा, समाज में जागरूकता लाने में शिक्षा की भूमिका है। और इसी के साथ अब बात करें तो शिक्षा और अच्छे रिश्तों का भी संबंध है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि सामाजिक जीवन में रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसे शिक्षा माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा इंसान को विनम्रता, धैर्य और समझदारी सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है मनीषा, वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, झगड़ों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश नहीं करता है, वो उनको अलग तरीके से निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: समाज में सहयोग और सम्मान का वातावरण बनाता है। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ हिंसा और विवाद कम होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षा केवल समाज ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुधारती है।
1: जी हाँ।
0: जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तब उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, वे नई तकनीक सीखते हैं, व्यापार करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। इसलिए कह सकते हैं मनीषा कि एक शिक्षित समाज बेरोजगारी कम करता है, गरीबी घटाता है, गाँव का विकास करता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए शिक्षा को विकास की रीढ़ कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शिक्षा सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है। समाज में जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर कई भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा इन भेदभावों को मिटाने का भी प्रभावी माध्यम है। श्रोता साथियों, शिक्षा हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य समान है।
0: जी हाँ।
1: किसी का सम्मान उसकी जाति, धन से नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यवहार से होना चाहिए। जब समाज में शिक्षा का प्रचार बढ़ता है साथियों, तब लोगों की सोच बदलती है और समानता की भावना भी मजबूत होती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि अशिक्षा के कारण लोग अक्सर अंधविश्वास और गलत धारणाओं में फंस जाते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच प्रदान करती है, वह हर बात को तर्क से समझ के आधार पर कार्य करता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे समाज में जागरूकता बढ़ती है और श्रोता साथियों, लोग धोखे या अंधविश्वास से भी बचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और रिश्तों के महत्व को जानता है, वह परिवार, मित्रों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा व्यक्ति में सहनशीलता, धैर्य और सहयोग की भावनाएं पैदा करती है साथियों, इससे समाज में प्रेम और भाईचारा है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो श्रोता साथियों, गाँव में आज भी कई लोग शिक्षा से दूर है। कुछ परिवार आर्थिक कमजोरी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, कई जगह लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अब समय बदल रहा है, आज गाँव में भी लोग समझने लगे हैं कि शिक्षा ही भविष्य बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ग्रामीण समाज में शिक्षा जरूरी क्यों है, क्योंकि श्रोता साथियों, इससे खेती के नए तरीके सीखने में मदद मिलती है, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, स्वास्थ्य और पोषण की समझ बढ़ती है और लोग आत्मनिर्भर बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब गाँव शिक्षित होंगे तभी देश वास्तव में मजबूत बनेगा। इसी के साथ बात करें मनीषा तो श्रोता साथियों, बच्चे देश का भविष्य है। यदि बच्चों को सही दिशा मिलेगी तो वे अच्छे नागरिक बनेंगे। बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा की भी जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: हमें उन्हें सिखाना होगा कि ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत, दूसरों का सम्मान और पर्यावरण की रक्षा करना क्यों जरूरी है, और यही मूल्य आगे चलकर समाज को बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समाज के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि महिलाएं शिक्षित होगी तभी परिवार और समाज दोनों आगे बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित महिला श्रोता साथियों अपने अधिकारों को समझती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और परिवार को सही दिशा प्रदान करती है।
0: जी हाँ।
1: महिला शिक्षा से बाल विवाह, घरेलू हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याएं भी कम हो जाती है। अंजलि जी, एक शिक्षित महिला पूरे समाज को जागरूक बना सकती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समझे। शिक्षा व्यक्ति को संविधान, कानून और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी देती है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित व्यक्ति मतदान का महत्व समझता है और समाज के नियमों का पालन करता है और साथ ही देश की प्रगति में भी अपना योगदान देता है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक विकास में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम देखते हैं कि जब लोग शिक्षित होते हैं तब उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं।
0: जी हाँ।
1: इससे उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है और जीवन स्तर भी बेहतर होता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है। और दूसरों की सहायता करने के लिए भी सक्षम होता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि शिक्षा समाज की गरीबी, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याओं से बाहर निकालने में भी अपनी भूमिका निभाती है।
0: जी हाँ, आज का समय तकनीक का समय है मनीषा। मोबाइल और इंटरनेट ने शिक्षा को आसान बना दिया है। अब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया से जुड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि लोग सही और गलत जानकारी में फर्क समझे। शिक्षा डिजिटल दुनिया में सही दिशा दिखाने का काम करती है।
1: जी हाँ।
0: यदि शिक्षा केवल नौकरी पाने तक सीमित रह जाए श्रोता साथियों, तो समाज अधूरा रह जाएगा। असल में शिक्षा वह है जो इंसान को अच्छा चरित्र देती है। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और समाज के प्रति जिम्मेदार रहना, ये सभी गुण शिक्षा से विकसित होते हैं। जब समाज में नैतिकता बढ़ती है मनीषा, तब भ्रष्टाचार और अपराध कम होते हैं। हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज बदलने का काम किया है।
1: बिल्कुल।
0: इन महान लोगों ने साबित किया है श्रोता साथियों कि किस तरीके से शिक्षा समाज को बदल सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि शिक्षा नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करती है, तो हम देखते हैं कि आज के समय में नैतिक मूल्यों का महत्व लगातार कम होता दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: स्वार्थ, लालच और गलत प्रतिस्पर्धा समाज को कमजोर बना रही है साथियों। शिक्षा व्यक्ति को ईमानदारी, सत्य, अनुशासन और समझदारी का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे समाज में नैतिकता और सदाचार की भावना है वो भी बढ़ती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं

0: बनाती है, वे अपने जीवन के साथ साथ समाज के विकास में भी अपना योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं होती है श्रोता साथियों, यह इंसान के विचारों को ऊंचा उठाने की शक्ति है। शिक्षा समाज में प्रेम, समानता, जागरूकता और विकास की नींव रखती है।
0: जी बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि एक अशिक्षित समाज डर और अंधविश्वास में जी सकता है, लेकिन एक शिक्षित समाज समझदारी, आत्मविश्वास और इंसानियत के साथ आगे बढ़ता है। मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जागरूक बनते हैं, तभी समाज मजबूत बनता है।
0: जी हाँ।
1: आज जरूरत केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा देने की है जो इंसान को संवेदनशील, जिम्मेदार और ईमानदार बनाए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अपने आसपास कम से कम एक बच्चे की शिक्षा में मदद करेगा, तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि शिक्षा वह दीपक है जो एक घर नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को रोशन कर सकता है। तो आइए श्रोता साथियों, हम सभी को ये संदेश सब तक फैलाना चाहिए कि शिक्षा केवल अधिकार नहीं, समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी है।
0: जी हाँ, जी हाँ, अंजलि जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही। हमने जाना कि शिक्षा नागरिक की भावनाओं को कैसे विकसित करती है, शिक्षा आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार कैसे है, शिक्षा के नैतिक मूल्य है जो हमारे विकास में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। ढेर सारी बातों को हमने जाना। आगे भी हम बातें करेंगे ग्रामीण और शहरी समाज में शिक्षा की भूमिका क्या है। लेकिन अभी क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: ही अंजलि जी, अगर हम बात करें कि ग्रामीण और शहरी समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग शिक्षा से वंचित हैं। इसके कारण वह गरीबी, अंधविश्वास और सामाजिक समस्याओं को अधिक देखने को हम देखते हैं। अंजलि जी, यदि गाँव में शिक्षा का प्रयास बढ़े तो स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और सामाजिक जागरूकता में भी सुधार होगा। श्रोता साथियों, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के कारण लोगों की सोच में भी बदलाव आया है।
1: जी जी।
0: वहाँ लोग तकनीकी, विज्ञान और आधुनिक जीवन शैली को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए गांव और शहर दोनों में संतुलित विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी आज शिक्षा के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण गरीब बच्चों को स्कूल नहीं जाने मिलता।
1: जी जी।
0: शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होता, नैतिक शिक्षा की कमी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी है अंजलि जी, साथ ही डिजिटल शिक्षा में भी असमानता हम देखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन समस्याओं का समाधान करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को इसके महत्व को बताना चाहेंगे। श्रोता साथियों, गाँव हरिपुर में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। खेतों से लौटते किसानों की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और चूल्हे से उठता धुआं पूरे गांव को जीवंत बना रहा था।
0: बिल्कुल।
1: उसी गांव में एक परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी गीता और उसके दो संतानें मोहन और छोटी बेटी रानी। रामू मेहनती किसान था लेकिन मनीषा पढ़ा लिखा नहीं था। वो हमेशा कहता कि हमारे बाप दादा बिना पढ़े जी लिए, तो पढ़ाई इतनी जरूरी भी नहीं। मोहन पांचवी तक पढ़कर खेत में हाथ बांटने लगा लेकिन रानी को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वे स्कूल से लौटकर अपनी किताबें बड़े प्यार से संभालती और माँ से कहती, माँ मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी। गीता मुस्कुरा देती लेकिन रामू को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन गांव में पंचायत भवन में शिक्षा पर एक बैठक रखी गई। गांव के मास्टर जी लोगों को समझा रहे थे कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती, यह इंसान को समझदार बनाती है और समाज बढ़ता है और वही आगे बढ़ता है। रामू पीछे बैठा सब सुन रहा था।
0: जी हाँ।
1: लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि ये सब किताबों की बातें हैं। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि गांव के पुराने कुएं का पानी अब शकुन वाला है। धीरे धीरे लोगों ने कुएं का पानी लेना बंद कर दिया। महिलाएं दूर दूर से पानी लाने लगी। रानी ने स्कूल में विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि पानी खराब होने का कारण गंदगी हो सकती है, कोई अपशकुन नहीं। उसने मास्टर जी से बात की। अगले दिन मास्टर जी कुछ बच्चों के साथ कुएं पर पहुंचे। उन्होंने पानी की जांच करवाई, पता चला कि कुएं में गिरे सूखे पत्ते और गंदगी के कारण पानी खराब हो गया था। सफाई करवाई गई और कुछ दिनों में पानी फिर साफ हो गया। गाँव वाले हैरान थे। रामू पहली बार सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते तो आज हम भी डर में जी रहे होते। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। एक दिन फिर मनीषा, मोहन खेत में खाद की बोरी लेकर आया। दुकानदार ने उसे गलत दाम बता दिए थे। मोहन हिसाब नहीं समझ पाया। तभी रानी ने स्कूल में सीखी गणित से पूरा हिसाब लगाया
0: जी।
1: और पता चला कि दुकानदार ज्यादा पैसे ले रहा है। रामू को बहुत शर्म महसूस हुई। वो बोला, जिस पढ़ाई को मैं बेकार समझता था वही आज हमारे काम आ रही है। उस दिन के बाद रामू ने फैसला किया कि उसके दोनों बच्चे पढ़ेंगे। समय बीतता गया, रानी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ी, गांव की पहली लड़की बनी जिसने कॉलेज में दाखिला लिया। लोग बातें बनाते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा, लेकिन किताब चुप नहीं रहती थी। वह कहती, शिक्षा किसी का नुकसान नहीं करती, जीवन बदल देती है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, कुछ वर्षों बाद गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां डॉक्टर कम थे। रानी जो अब नर्स बन चुकी थी लोगों की मदद कर रही थी। बूढ़े लोगों को दवा समझाना, बच्चों की जांच करना, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, वो पूरे मन से काम कर रही थी। रामू दूर खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसे याद आया वह दिन जब उसने कहा था कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं। रात को घर लौटते समय उसने गीता से धीमे स्वर में कहा, अगर रानी पढ़ी लिखी नहीं होती तो शायद इतने लोगों की मदद नहीं कर पाती। गीता भी मुस्कुराई और उसने कहा, मनीषा कि शिक्षा की रोशनी केवल एक इंसान का जीवन नहीं बदलती, पूरे समाज को उजाला देती है।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे हरिपुर गांव बदलने लगा। अब लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे, पंचायत ने गांव में पुस्तकालय शुरू करवाया, महिलाएं भी पढ़ना सीखने लगी, मोहन ने खेती के नए तरीके सीखे, खेतों में अच्छा उत्पादन होने लगा, गाँव के लोग अब सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने लगे। जहाँ पहले अंधविश्वास और डर था, वहाँ अब समझ और जागरूकता थी। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं होती, बल्कि इंसान को जागरूक, आत्मनिर्भर और समझदार बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। जहाँ शिक्षा होती है, वहाँ अंधविश्वास कम होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और विकास का रास्ता खुलता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार और समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, माता पिता को बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए, समाज को भी अपनी सुनिश्चितता चाहिए श्रोता साथियों, और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। हमें लड़का और लड़की दोनों को समान शिक्षा का अवसर देना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व समाज दोनों को बेहतर बनाने की शक्ति है। शिक्षित बनिए, लेकिन साथ ही संवेदनशील और जिम्मेदार भी बनी है।
1: बिल्कुल।
0: समाज को बदलने की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि आप शिक्षित होकर अच्छे विचारों को अपनाते हैं, तो आपका परिवार और समाज भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पाए, आगे भी कुछ बातें हैं जो बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपये से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि समाज जो है वो केवल सड़कों, इमारतों और बाजारों से मजबूत नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की सोच, समझ और व्यवहार से मजबूत बनता है। और इस सबकी नींव शिक्षा ही रखती है। शिक्षा इंसान को केवल पढ़ा लिखा नहीं बनाती, बल्कि जीवन को सही नजरिए से देखना सिखाती है। यह हमें दूसरों के दुख को समझने की संवेदनशीलता देती है, सही फैसले लेने की समझ देती है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल।
0: जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो केवल एक छात्र नहीं बनता, बल्कि वह भविष्य में एक जागरूक नागरिक भी तैयार होता है। वही बच्चा आगे चलकर अपने परिवार, गाँव और पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। शिक्षा लोगों को डर और अंधविश्वास से बाहर निकाल कर आत्मविश्वास और समझदारी की ओर ले जाती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाए।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा हमें प्रेम, दया, करुणा और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है। जब समाज में मानवता जीवित रहती है साथियों, तभी वास्तविक विकास संभव होता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि समाज की मजबूती केवल बड़ी इमारतों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि शिक्षित और जागरूक लोगों से होती है। शिक्षा श्रोता साथियों वह प्रकाश है जो व्यक्ति के जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है और समाज को नई दिशा देता है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, यदि हर व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझे और दूसरों को शिक्षित करने का प्रयास करे तो एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां समानता, सम्मान, शांति और खुशहाली हो।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए शिक्षा को केवल अधिकार नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझकर हमें कार्य करना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नए अवसर और नई चुनौतियां हर दिन सामने आ रही है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों, यदि समाज शिक्षित नहीं होगा तो वह पीछे छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा केवल शहरों तक सीमित नहीं रहे बल्कि गांव-गांव और घर घर तक पहुंचे। हमें यह भी समझना होगा कि असली शिक्षा वही है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। यदि पढ़ाई के बाद भी व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना, ईमानदारी से जीना और समाज के लिए अच्छा सोचना नहीं सीख पाया तो वह शिक्षा अधूरी है। एक अच्छा समाज वही होता है जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा गिराने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जहां लड़का और लड़की दोनों को बराबर अवसर मिले, जहां गरीब बच्चे की पढ़ाई आर्थिक मजबूरी के कारण न रुके, जहां बुजुर्गों के अनुभव और बच्चों के सपने दोनों को सम्मान मिले। आज जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि हम शिक्षा को केवल नौकरी पाने का जरिया न समझें, बल्कि समाज सुधार की सबसे बड़ी ताकत माने, क्योंकि शिक्षित समाज ही जागरूक समाज होता है और जागरूक समाज ही सुरक्षित, संवेदनशील और विकसित भविष्य बन सकता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हर बच्चे को पढ़ने का अवसर देंगे, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे और समाज में ज्ञान, समझ और मानवता की रोशनी फैलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब शिक्षा का दीप हर घर में जलेगा तभी समाज में सच्ची प्रगति, समानता और खुशहाली आ पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल।
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर रोजाना हाजिर हो जाते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने पसंदीदा नगमे हम तक पहुंचाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, तो जरूर सुन सकते हैं। आपको करना है कुछ नहीं श्रोता साथियों, आपको लिखना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फिल्म का नाम, गीत की बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर में फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और पसंदीदा नगमे हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतजार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि सुबह के 11 बज चुके हैं और ढेर सारी फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ चुकी हैं, इसी बीच मैं बढ़ती हूँ पहली फरमाइश की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारी बीच आई है नरसिंहगढ़ से, यानी कि राजगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है तुलसी तेरे आंगन की, गीत के बोल है मैं तुलसी तेरे आंगन की। फरमाइशकर्ता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगे जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे बीच। आपको बता दूं श्रोता साथियों, वडाली देशमुख से हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, झकोली ताई खोबरखेड़े, खानवी बुल्धाना से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, अमरावती से हैं सुनैना पवन, तनुज भोंडे, नवाशहर पंजाब से हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश, शिखा, प्रतीक साधु और मेक्स जी। पेठन से जुड़ना चाह रहे हैं अदनान, नुमान, गुरफान और फुरखान, आसमा मोरवे, अजुम मोरवे, खुशी मोरवे। पंडरपुर से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी, ऋषि शिंदे जी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और मनोरंजन कीजिए आपके द्वारा भेजे गए नगमों का।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का पहला बहुत ही प्यारा सा गीत था मैं तुलसी तेरे आंगन की, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गाया हुआ गीत था श्रोता साथियों। इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं पायलिया ओ हो हो हो। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं पंढरपुर से ही जाकिर मुलानी, सुबैया सलमा, मुमताज दिलसाद, नसर भी, बानो भी, बादशाह मुलानी जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण भी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्तों, और भी श्रोता साथी रोहिदास चौक से हैं सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, प्रशांत शिंदे, कृष्णा घोड़के जी, मस्तानपुरा पुन्ना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं बागपत से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश की गीत के साथ में। गीत के बोल है पाई अलिया ओ हो हो हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इसी प्यारे से फरमाइश के गीत के बाद फिर से जुड़ चुकी हूँ मैं आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, फिल्म का नाम है पलकों की छाँव में, गीत के बोल हैं डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम लाया। ये फरमाइश हमारे बीच बागपत से आई है साथियों, और फरमाइश करता है, आपको बताना चाहूंगी, जगमोहन सिंह प्रतापत मुनीश देवी जी, अर्जुन जी, अंजलि जी, नितिन जगमोहन, सुधनितन, शिषपाल अकेला जी, भुवनेश्वरी देवी जी और दिल्ली से है रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। साथियों, खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं, बहरामगढ़पुरा से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन आरोही, ऐशिका श्वेता वर्मा जी, और भी दोस्त हमारे इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितेश शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजनी शाह, सुषमा कपूर जी। हमारे साथी और भी जुड़ना चाह रहे हैं, नादेर महाराष्ट्र से भी दोस्त हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी। मजनू का टल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमक मलिक, आकांक्षा मलिक, और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब और लड्डू जी। खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं डाकिया डाक लाया।

0: तीज आती है बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गो, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवे का लिख दो ना।

मनिया होली के होली मनिया डर से माल भेजे ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे ए होली के होली मनिया डर से माल भेजे ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे किसी की दिवाली आई किसी

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। जैसा कि फरमाइश का गीत बहुत ही प्यारा सा चल रहा था, डाकिया डाक लाया, जो कि किशोर कुमार जी की आवाज में था। श्रोता साथियों, इसी गीत के बाद अगली फरमाइश हमारे बीच आई है राहुल नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों इम्तिहान। गीत के बोल है रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चनाताई गुणा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुणा ने जी। जवाहर नगर दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, विपुल, अश्विन कांबड़े और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं दोस्तों फैजारा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन कश्मीर से हैं। अब्दुल्ला मस्जिद से जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल, परिकृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी, बेबी शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी और जाकिर खत्री जी। छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, खूबचंद्र, मुरली वर्मा। गंजुडवारा से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं शमशिल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। कोका भिलाई से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल, अंजलि जंगेल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सावर रोड से हैं उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राय, यासिन हाशमी, अफ्ताब अंसारी जी। बोरखेरा पित्रामल से हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी और दीक्षा कुश मूणत जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं रुक जाना नहीं कहीं तू हार के।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत दोस्तों हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल है पैरों में बंधन है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल और विश्रोता साथी जुड़ना चाह रहे गंजुटवाड़ा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुसारी कलीम अंसारी जी, गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावे नवाज, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, कुरावली से जुड़ना चाह रहे अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदर शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी, जफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वज सानवी, कल्पना देशमुख, नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती प्रसाद और चंदन यादव, सुभाष एकनाथ, सोमनाथ यादव, दादरी गेट भिमानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवारकर, निर्मला विशाल जी, नारायण इंगले और सोपान ताइडे, आशीष मोहेरकर जी, मलोद से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीतानंद जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया जी, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले जी, गणेशपुर से जुड़ना चाह रहे फिरासत हुसैन, अलक कुमार जहां, सिफा सरवीन और अल्फेज जी, कासगंज से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जाहिद अली सैफी, आबाद खान, जोहान, लिप्पा मलिक और भी अनुरोध करता है। राजस्थान भोपालगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताजुद्दीन अंसारी, गुलाम शाबी रही, महराज जहां। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: अब ये झुकने वाली नहीं,

0: दोस्तों, जैसा कि फरमाइश का गीत तो पूरा हो गया, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइशकर्ता की ओर। साथियों, अगले फरमाइशकर्ता है बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया, जो कि जुड़ रहे हैं जज्जर हरियाणा से। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है, चांद से पर्दा कीजिए, बहुत ही प्यारा सा गीत सुनने की। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आओ प्यार करें। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू जी ने। और भी ऐसे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। सहारनपुर से हैं सैयद मसूर, साइना असाक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम और अदीब हसन जी। बुल्ढाणा से नारायण हांगे, कमल हांगे, दिव्या हांगे, जय हांगे। बिलाड़ा राजस्थान मारवाड़ से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट जी, जस्मिन और प्रयागराज भट्ट जी, जो कि राजकोट से जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है चांद से पर्दा कीजिए।
1: ठीक है, मैं गाता हूँ।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है करेली बरेली से। साथियों, फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी, मीठी मीठी बातें सोल्जर। गीत के बोल है सोल्जर सोल्जर मीठी मीठी बातें। फरमाइश करता जुड़ रहा आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीन अंसारी और शमा अंसारी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे नाशिद शेख, नाजर नाशिद, साजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। कुंभार गली कौल गांव से हैं पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश और संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडोकोल मल्होत्रा, नानकचल मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डोको सिक्का जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहल, बीपी कुलथे जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। रोहतक हरियाणा से जुड़ना चाह रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सोल्जर सोल्जर मीठी मीठी बातें। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। दोस्तों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है मोहब्बती गीत के बोल ही चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही है राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बाबा कुटरे रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुधन धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सूरीज, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। पठरपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़गी जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही चलते चलते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है हीना, गीत के बोल है मैं हूँ खुशरंग हीना। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फैजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलराम गेट कासगंज से एस असलम सेफी, जुबनेशा बेगम, अक्रम सेफी, सदाम सेफी, सोनी सेफी, जायद जी सेफी और आबाद जी खान। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मैं हूँ खुशरंग हीना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मैं हूँ खुश रंग हीना। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है विजयपथ। गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत रमेश शाहू। बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अलीबा, दानिश जी अंसारी। बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नई बस्ती गंजड़वारा सी यासिन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तोइनूर जी हाशमी, करीम अंसारी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है काला बाजार, गीत के बोल हैं पैसा बोलता है। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांभले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, संजुगदा श्रीवास, रंजन शाह, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से परेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार जी चंदन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ जी गोड़ाने। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही पैसा बोलता है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी ही उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है चित्रलेखा। गीत के बोल हैं, सखी रे मेरा मन उलझे तंडोले। इस गीत की फरमाइश करता है उमासिया, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रही है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष आजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। इस गीत की अनुरोध करता है बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थन दादा, भगवान जी पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी जी पाटिल, कुमारी सानिका जी पाटिल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से विकास बंसोड़ी, रेखा बंसोड़ी, अदिति बंसोड़ी, वैभव जी बंसोड़ी। खंडाला से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश और प्रिया जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से, बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है सखी रे मेरा मन उलझे तंडोले। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागो रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुजफ्फरपुर बिहार से। फिल्म का नाम है परवरिश। गीत के बोल हैं, हम प्रेम करने वाले प्रेम करना जाने। इस गीत की फरमाइश करता है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से, निगहत परवीन अब्बासी, सहीद अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नूजी वड़तकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाटल, जयपाल पुरी जी। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भवी जी जैन। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पटियाकला दुर्ग से संजय शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू, सुजिता जी शाहू। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कंस्ट्री द्वारा से। फिल्म का नाम है रंग। गीत की बोल है तुझे ना देखो तो चैन आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश करते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकिरत मन्नत, सिमरत गुरशब्द सिंह राहुल और विजेंद्र जी जयपाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष गोस्वामी, सिवन्या गोस्वामी, अन्नू जी गोस्वामी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजरू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी। पत्रोट से जुड़ रही हैं विजय अंबाडेकर, सुनीता अंबाडेकर, अक्षय अंबाडेकर, राधिका अंबाडेकर, ऋषिकेश जी अंबाडेकर। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबीजी खेड़ा। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ना चाह रहे हैं मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल सी सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जौनपुर से। गीत के बोल ही बोल रहा था बोल। इस गीत की फरमाइश करता है इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरत अबू समझी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ रही है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने जी। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रही है डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ रही है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शायशा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छमूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजुक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुमन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कुम्हारी अंकिता जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जेवंती जी केवट। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही बोल रहा था बोल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यह समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अरे गोरी इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो कुछ खाया पिया नहीं है क्या
4: अरे दीदी क्या करूं कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा
3: अरे गोरी ये तो गर्भावस्था में होता ही है जी मचलाएगा खाने का मन नहीं करेगा पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा
4: अरे वाह दीदी अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी
3: ये हुई ना बात गोरी
2: याद रहे गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना वागर रेडियो द्वारा

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना वागड़ रेडियो 90.8 FM और कार्यक्रम युवाओं की आवाज।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज का विषय रहेगा आपसे बातचीत का, स्वयं को बेहतर बनाने का हम अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि श्रोता साथियों, हम मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेने और समय बिताने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि निरंतर सीखने, बदलने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए भी हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है कशिश, लेकिन उन संभावनाओं को पहचान कर उन्हें विकसित करना ही असली सफलता कहलाती है।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में विषय के साथ में। जैसा कि गीत से पहले विषय बताया था, साथियों की बात कर रहे हैं कि स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जागृति जी आपने बताया था हमारे युवाओं को कि हमारा जो जीवन है वो सीखने, समझने और निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: इस संसार में दोस्तों कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान के भीतर कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है ना जागृति जी, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास ही साथियों सफलता, आत्मविश्वास और संतुलित जीवन जीने की असली कुंजी होती है।
1: और हम देखते हैं कि कशिश, आज के समय में बहुत से युवा दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है श्रोताओं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है।
0: बिल्कुल।
1: स्वयं को बेहतर बनाने का पहला कदम है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है तभी वो आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को मजबूत बनाए रखती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश कि स्वयं को बेहतर बनाने का अर्थ केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखना नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहारों और आदतों और कार्यों में भी सुधार लाना होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तभी उसका वास्तविक विकास भी होता है। जो लोग हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं वे स्वयं की कमियों को भी कभी नहीं पहचान पाते, लेकिन जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर दिशा देने लगता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। और हम देखते हैं कि आज के युवाओं का जो समय है वो प्रतियोगिता का समय है।
1: बिल्कुल।
0: हर युवा अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई अच्छा करियर बनाना चाहता है तो कोई समाज में पहचान बनाना चाहता है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई ऐसे भी हैं जो मानसिक शांति और खुशहाल जीवन की तलाश में है। लेकिन दोस्तों, इन सभी उपलब्धियों की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वो है स्वयं से। यदि हम खुद बेहतर बनना सीख जाएं साथियों, तो वह जीवन की हर चुनौती का सामना हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं को बेहतर बनाना केवल बाहरी व्यक्तित्व को बदलना नहीं होता दोस्तों, बल्कि अपने विचारों के साथ साथ अपनी आदतों, अपने व्यवहार और सोच को सकारात्मक दिशा देना भी होता है।
1: जी हाँ।
0: हम कह सकते हैं कि स्वयं को बेहतर बनाने का मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना।
1: बिल्कुल।
0: नई नई बातें सीखना जागृति जी, अच्छी आदतें अपनाना, नकारात्मक सोच को बदलना और अपने व्यक्तित्व को निखारना। दोस्तों, ये वैसे तो एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
1: जी हाँ।
0: देखते हैं कि जैसे हम पौधे को रोज पानी देते हैं साथियों, और उसे पानी की आवश्यकता भी होती है, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व को भी रोज अभ्यास और सुधार की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल कशिश। और इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छी आदतें ही उज्जवल भविष्य की नींव बनती है। श्रोता साथियों, समय का सही उपयोग भी स्वयं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी जी।
1: जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया और आलस्य आज युवाओं की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है।
0: बिल्कुल।
1: यदि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा तो उसका जीवन अवश्य बदल सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है।
0: बिल्कुल।
1: आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच का भी होना बहुत जरूरी है। कशिश, नकारात्मक सोच व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है।
0: जी जी।
1: जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा सोचता है वो कठिनाइयों में भी अवसर खोज लेता है। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा भरती है।
0: बिल्कुल।
1: और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना गलत है। असफलता हमें सीख देती है कि हमें और बेहतर बनने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी चली रही हैं, ये बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना साथियों को यहाँ पर यह गीत सुनवाएं हम।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, स्वयं को बेहतर बनाने का हम अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं, बातें काफी अच्छी चल रही थी। इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है, तो ही सफलता हमारा सम्मान करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच होना जरूरी है। अच्छे लोगों की संगति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि जैसा वातावरण होता है व्यक्ति वैसा ही बनता जाता है। यदि हम मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे कशिश, तो हमारे अंदर भी वही गुण विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहीं अगर गलत संगति व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है, इसलिए जीवन में अच्छे मित्रों और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों जीवन में बड़े परिवर्तन कभी अचानक नहीं आएंगे, आपको ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जैसे कि समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना, रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करना और अपनी बातों में विनम्रता रखना। दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि इसी के साथ ही असफलताओं से सीखना भी एक अच्छी आदत है। दोस्तों बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो असफलता के बाद टूट जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि असफलता कभी अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति साथियों अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है, और हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि धैर्य, मेहनत, अनुभव, आत्मविश्वास जैसे गुण यदि दोस्तों इंसान गिरकर फिर उठना सीख जाए तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जीवन में विनम्रता और व्यवहार कुशलता भी व्यक्ति को महान बनाती है। केवल ज्ञान या पैसा ही व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार उसे सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, बड़ों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहता है, वही सच्चे अर्थों में बेहतर इंसान कहलाता है। अच्छा व्यवहार समाज में प्रेम और सम्मान बढ़ाता है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाना कितना जरूरी है। जैसे कि कशिश, एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में कमजोर था और हर समय अपनी किस्मत को दोष देता रहता था।
1: बिल्कुल,
0: एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक पौधा दिया और कहा कि इसे प्रतिदिन पानी देना और इसकी देखभाल करना। अर्जुन ने धीरे धीरे उस पौधे की देखभाल शुरू की। कुछ महीनों बाद वो पौधा एक सुंदर वृक्ष बन गया। तब शिक्षक ने कहा, जिस तरह इस पौधे को रोज देखभाल की जरूरत थी, उसी तरह इंसान को भी खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: उस दिन अर्जुन को अपनी गलती समझ आई और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। श्रोताओं, कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सफल व्यक्ति बन गया। इसलिए कहा गया है कि रोज का छोटा सुधार भविष्य का बहुत बड़ा चमत्कार बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, बहुत ही प्यारी सी कहानी आपने हमारे युवा साथियों को बताई। इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाने का मतलब केवल पढ़ाई या करियर नहीं होता, बल्कि इसमें अच्छे स्वास्थ्य का होना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम करने को शामिल करना चाहिए, पौष्टिक भोजन आपको खाना है, पर्याप्त नींद लेनी है, और साथ ही हमारे युवा साथी योग और ध्यान भी कर सकते हैं। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, साथ ही नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति को भी आप जारी रखें।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सीखना कभी हमारे जीवन में बंद तो नहीं होना चाहिए। जागृति जी, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, हम देखते हैं कि उसका विकास रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में नई भाषा, नई कला, नई तकनीक या फिर कोई नया कौशल हो साथियों, हर नई चीज इंसान को और बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
0: बिल्कुल,
1: आपसे कहना चाहेंगे कि स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे जरूर होती है। कई बार तो तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रयास करना ही छोड़ दिया जाए।
0: जी हाँ
1: साथियों, जैसा कि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व को निखरने में भी समय लगता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वयं को बेहतर बनाने का अर्थ ये भी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गलती करना गलत नहीं है श्रोताओं, लेकिन उसे बार बार दोहराना गलत है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। महान लोग भी असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे।
1: बिल्कुल,
0: यदि हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा तो पूरा समाज बेहतर बन सकता है। एक अच्छा इंसान अपने परिवार, समाज और देश के लिए प्रेरणा बनता है। इसीलिए श्रोता साथियों, हमें अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत, करुणा और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: स्वयं को बेहतर बनाना जीवन की सबसे सुंदर आवश्यक प्रक्रिया है।
1: जी हाँ।
0: कोई प्रतियोगिता नहीं है श्रोताओं, हमें दूसरों से बेहतर बनना है, बल्कि हमें कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना है। जब व्यक्ति प्रतिदिन सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का अभ्यास करता है, तब उसका जीवन सफलता, सम्मान और खुशियों से भर जाता है। कशिश
1: जी,
0: हमें
1: हाँ।
0: कभी ये नहीं सोचना चाहिए श्रोताओं कि अब सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि सीखने और सुधारने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं युवा साथियों कि हमें अपने जीवन को केवल दूसरों को प्रभावित करने में नहीं बिताना है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व और कार्यों से बने। श्रोता साथियों, हर दिन आप खुद से ये कहिए कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या सीख सकता हूँ,
0: बिल्कुल,
1: मैं बदल सकता हूँ और मैं बेहतर बन सकता हूँ।
0: जी हाँ।
1: ऐसे याद रखिए श्रोता साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आपको दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करना होता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं को बेहतर बनाने का अभ्यास जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है दोस्तों। ये यात्रा इंसान को मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने भीतर छिपी संभावनाओं को युवा साथियों पहचानिए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दीजिए और हर दिन खुद को एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: जो इंसान स्वयं को बदलना सीख जाता है वही असल में अपने जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है और आशा भी है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारे बच्चों के लिए विषय को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं वो बच्चों के जीवन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विषय रिश्तों से जुड़ा हुआ है, आदतों से जुड़ा हुआ है और जीवन की छोटी छोटी बातों से भी इसमें सीख छिपी हुई है। बात कर रहे हैं साथियों दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दोस्ती यह सिर्फ साथ घूमने, बातें करने या हंसने का नाम नहीं होता, बल्कि सच्ची दोस्ती वह होती है साथियों जहां अपनापन हो, समझ हो, भरोसा हो और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी भी हो। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि विषय आज का बहुत ही अनोखा है तो इस विषय को और भी रोचक बनाने के लिए श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमारा जुड़ रहा है उस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बात कर रहे हैं दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी को लेकर। हम देखते हैं साथियों कि हमारे बचपन की दोस्ती बहुत मासूम होती है। बच्चे जो होते हैं वो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, धीरे धीरे ये दोस्ती उन्हें जीवन की सबसे बड़ी बातें भी सिखाती है कि कैसे किसी की भावनाओं को समझना है, कैसे साथ निभाना है और कैसे सही समय पर सही सलाह देकर अपने दोस्तों को गलत रास्ते पर जाने से बचाना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सिर्फ मजाक करते हैं दोस्ती में, गुस्से या छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं और सामने वाले की परेशानी समझ ही नहीं पाते। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे भी अपने दोस्तों का दर्द समझ लेते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में रेडियो नाटक रहने वाला है। इस कहानी में साथियों दो सहेलियां हैं, नैना और कविता। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। एक बहुत जल्दी नाराज हो जाती है और बातों को दिल पर ले लेती है, जबकि जो दूसरी है वो समझदारी से रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में आइए साथियों हम सुनते हैं दोस्ती में समझदारी और जिम्मेदारी की भावना को।
1: कविता, आज मुझे बहुत बुरा लगा। सुबह से तो ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं है।
2: नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं थोड़ा परेशान थी इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी दोस्ती बदल गई है। कभी कभी इंसान अपने मन की उलझनों में इतना खो जाता है कि वह सामान्य तरीके से बात नहीं कर पाता।
1: लेकिन कविता, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं सोचती रही कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया।
2: अरे नहीं, अगर दोस्ती सच्ची हो तो हमें हर बार तुरंत गलत नहीं समझना चाहिए। पहले सामने वाले की स्थिति भी समझने की कोशिश करनी चाहिए नैना।
1: शायद मैं जल्दी सोचने लगती हूँ, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हूँ, फिर मन खराब हो जाता है।
2: ऐसा कई बार होता है, लेकिन दोस्ती सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं सामने वाले की स्थिति भी समझनी पड़ती है। अगर हम हर बात पर नाराज हो जाएं, तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं नैना।
1: मतलब कविता, दोस्ती में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता।
2: अरे पागल, ऐसा नहीं है। प्यार जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी है, तभी तो दोस्ती लंबे समय तक टिकती है।
1: कविता, आज टीचर बता रही थी कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो गलत काम में साथ न दें। पहले मुझे लगता था कि दोस्ती का मतलब हर बात में साथ देना है।
2: नहीं नैना, सच्चा दोस्त वो होता है जो जरूरत पड़ने पर रोक भी सके। अगर दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है और हम चुप रहे तो वो कोई दोस्ती नहीं होती, लापरवाही होती है।
1: मतलब जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं दोस्त की भी होती है।
2: हाँ, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ रहना नहीं होता है, बल्कि मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाना भी होता है।
1: अच्छा, एक बात बताओ कविता, कल जब तूने मुझे ज्यादा मोबाइल चलाने से रोका था तब मुझे लगा था कि तू मुझे रोक टोक कर रही है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि तू मेरी चिंता कर रही थी।
2: हाँ, क्यों ना करूँ भला। अगर हम अपने दोस्त की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कई बार प्यार जिम्मेदारी और समझाने के रूप में आता है, डांट के रूप में नहीं आता।
1: हाँ कविता, अब मुझे लग रहा है कि मैंने कई बार बिना समझे तुझे गलत समझ लिया।
2: कोई बात नहीं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझना सीखते हैं, और मैं तुम्हें समझती हूँ।
1: आज मैं भी बहुत परेशान हूँ।
2: क्यों, क्या हुआ तुम्हें?
1: आज घर में मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब तू मेरे साथ बैठी और मुझे संभाला तब मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती में कितनी बड़ी ताकत होती है।
2: हाँ, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती है। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। और वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल समय में अपने दोस्त को छोड़कर चला जाए।
1: हाँ, तभी तो तूने बिना सवाल किए मेरा साथ दिया, ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी।
0: क्योंकि कई बार इंसान को सवाल से ज्यादा जरूरत होती है साथ की। पर अगर मैं साथ न देकर तुमसे सवाल करती तो तुम भी मुझ पर गुस्सा कर बैठती।
1: अब मुझे समझ आ रहा है कि दोस्ती सिर्फ समय बिताने का रिश्ता नहीं है, इसमें भरोसा, समझ और जिम्मेदारी भी होती है।
2: बिल्कुल, और जब दोस्ती में सम्मान और समझ बना रहता है तब वह रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है नैना।
1: हाँ कविता, अब मैं कोशिश करूंगी कि हर बात पर तुरंत नाराज न हो जाऊं और पहले दोस्ती की स्थिति को समझ लूं।
2: यही समझदारी दोस्ती को खूबसूरत बनाती है। इसलिए अगर तुम ये बात समझ गई हो तो अब से मुझे जरूर समझना।
1: हाँ बिल्कुल कविता, आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची दोस्ती वही है जहाँ हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, गलतियों पर संभाले और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें।
2: सही कहा तुमने, जब दोस्ती में जिम्मेदारी जुड़ जाती है तब वह रिश्ता रिश्ता नहीं रहता बल्कि जीवन की ताकत बन जाता है।
1: अब मैं दोस्ती को सिर्फ मजे का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास और समझ का रिश्ता मानूंगी
2: और यहीं से हमारी कहानी सबसे बड़ी सीख देती है कि दोस्ती में प्यार रहे, समझदारी के साथ रहे, जिम्मेदारी जुड़ जाए, रिश्ता जीवन भर मुस्कुराए।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमने नैना और कविता की दोस्ती को जाना कि किस प्रकार से नैना जो है वो बहुत भावुक और जल्दी नाराज होने वाली लड़की है, लेकिन कविता शांत, समझदार और रिश्तों को संभालने वाली है। दोस्तों, इन दोनों की बातों से हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझ पाए हैं कि किस प्रकार से दोस्ती हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि दोस्ती में प्यार रहे, समझदारी साथ रहे, जिम्मेदारी जुड़ जाए और रिश्ता जीवन भर मुस्कुराए। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दोस्ती जो है वो जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, लेकिन हर रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसमें समझ, धैर्य और जिम्मेदारी जुड़ी हुई हो। आज की इन दोनों सहेलियों की कहानियां हमें ये सिखाती है कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ हमारे साथ हंसे, बल्कि वह भी है जो हमें समझे, संभाले और जरूरत पड़ने पर सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, आज के समय में लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बिना पूरी बात समझे रिश्तों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें और रिश्तों को समय दें, तो दोस्ती और भी मजबूत हो सकती है। साथियों, इसलिए याद रखिए, दोस्ती में सिर्फ साथ नहीं, समझ भी जरूरी है, सिर्फ हंसी नहीं, जिम्मेदारी भी जरूरी है, और सिर्फ बातें नहीं, भरोसा भी जरूरी है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाना चाहूंगी।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा विशेष कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही दोस्ती को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि रिश्ते बनाना तो आसान होता है लेकिन उन्हें निभाना समझदारी मांगता है। दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो सिर्फ साथ घूमने या बातें करने से मजबूत नहीं होने वाला, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतफहमियों को धैर्य से सुलझाने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने से मजबूत बनेगा। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आपको छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का
1: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि गांव केवल मिट्टी खेत और घरों का नाम नहीं होता, बल्कि गांव एक जीवित समाज होता है जहां हर व्यक्ति का सपना संघर्ष और उम्मीद जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव की पंचायत और वहां की जनता एक साथ मिलकर काम करती है अंजलि, तब विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धरातल पर दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकता होती है। यदि पंचायत ईमानदारी से काम करे और जनता जागरूक होकर उसका साथ दे तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव केवल रहने की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, मेहनत और सामूहिक जीवन की पहचान होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी भी गांव का विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। गांव तब आगे बढ़ता है जब वहाँ की पंचायत और जनता मिलकर काम करती है।
1: जी हाँ।
0: पंचायत और जनता का रिश्ता केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए श्रोता साथियों, बल्कि विकास, सहयोग और जिम्मेदारी का रिश्ता होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं जागृति जी कि गांव की हर समस्या का समाधान केवल सरकार करेगी।
1: जी हाँ।
0: वहीं कई बार पंचायत ये मान लेती है कि जनता सहयोग नहीं करती। इसी दूरी के कारण हम देखते हैं कि गांव की छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब पंचायत और जनता एक साथ खड़ी होती है तब गांव में ऐसे बदलाव आते हैं जो वर्षों तक समाज को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि हम बात करने वाले हैं पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, आज देश के कई गांव ऐसे हैं जहां पंचायत और जनता ने मिलकर शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अद्भुत बदलाव किए हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये साबित करता है कि बदलाव लाने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि जनता की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायत गांव की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरकार होती है। श्रोता, गांव की सड़कें, पानी, बिजली, सफाई, शिक्षा और अन्य योजनाओं की जिम्मेदारी पंचायत पर होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अकेली पंचायत सब कुछ नहीं कर सकती अंजलि। जब तक जनता उसका सहयोग नहीं करती तब तक योजनाएं सफल नहीं हो पाती।
1: जी।
0: यदि पंचायत और जनता दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे तो गाँव का हर काम आसान हो सकता है। पंचायत दिशा देती है और जनता उस दिशा को ताकत देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चा स्वराज केवल अधिकार मांगने का नाम नहीं है बल्कि मिलकर जिम्मेदारी निभाने का नाम है।
0: बिल्कुल।
1: जब गांव का हर व्यक्ति अपने गांव को अपना परिवार समझने लगे और पंचायत जनता की आवाज को सम्मान दे तब विकास केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: पंचायत गांव की सबसे नजदीकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। गांव की जरूरतों समस्याओं को पंचायत सबसे बेहतर तरीके से समझ सकती है।
0: जी हाँ।
1: सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी योजनाएं, जल संरक्षण, पशुपालन और सामाजिक सुधार जैसे कई कार्य जो है वो पंचायत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंचायत अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। यदि जनता साथ न दे तो नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, केवल शिकायतें ही रह जाती हैं और विकास अधूरा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पंचायत और जनता दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। अगर ये एक दूसरे के विरोधी होंगे तो गांव का विकास संभव नहीं है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कहा भी गया है कि पंचायत की शक्ति तभी बढ़ती है जब जनता जिम्मेदारी से जुड़ती है। आज भी कई गांव में गंदगी और खुले में कचरा फेंकने की समस्या हम देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि पंचायत सफाई अभियान चलाए और जनता भी जागरूक होकर उसमें भाग ले तो पूरा के पूरा गाँव स्वच्छ बन सकता है। यदि हर व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखे, कचरा इधर उधर न फेंके और पंचायत नियमित सफाई करवाए तो बीमारियां कम होंगी और गांव सुंदर बनेगा। स्वच्छ गांव केवल देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि वहां रहने वाले लोग भी स्वस्थ रहते हैं।
1: जी।
0: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि पानी आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कई गाँव में अंजलि गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। यदि पंचायत तालाबों की सफाई करवाए, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करे और जनता पानी बचाने की आदत अपनाए तो जल संकट भी कम हो सकता है। गांव के लोग यदि मिलकर पेड़ लगाएंगे और जल स्रोतों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव की असली ताकत वहां के लोग ही होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि जनता जागरूक हो, जिम्मेदारी समझे तो गांव तेजी से बदल सकता है। जनता की भागीदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि गांव की असली समस्या जनता ही जानती है।
0: बिल्कुल।
1: विकास कार्यों की निगरानी जनता कर सकती है। सफाई, जल संरक्षण और शिक्षा जैसे जो कार्य हैं, वो सामूहिक रूप से सफल हो सकते हैं। पंचायत को सही सुझाव मिलते हैं, भ्रष्टाचार और लापरवाही कम होती है, लोगों में अपनापन और जिम्मेदारी बढ़ती है। श्रोता साथियों, जब गांव का हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि यह मेरा गांव है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तभी सच्चा विकास संभव होता है।
0: जी हाँ।
1: आज कई गांवों में गंदगी, प्लास्टिक कचरा, खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या बढ़ रही है। केवल सफाई कर्मचारी रखने से गांव की साफ सफाई नहीं होगी, इसके लिए लोगों की सोच भी बदलनी जरूरी है। यदि पंचायत सफाई अभियान चलाए तो जनता उसका सहयोग करे तो गांव स्वच्छ और स्वस्थ बना रहेगा।
0: जी हाँ।
1: हर मोहल्ले में सफाई की जिम्मेदारी तय हो, कचरा इधर उधर फेंकने पर रोक लगे, प्लास्टिक का कम उपयोग हो, बच्चे और युवा सफाई अभियान में शामिल हो, सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई हो, स्वच्छ गांव में बीमारियां कम होती हैं श्रोता साथियों और लोगों का जीवन बेहतर बन पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पंचायत और गांव की क्या भूमिका होती है एक गांव में, तो श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि जब गांव की महिलाएं मजबूत बनती है तभी समाज मजबूत होता है। अंजलि, पंचायत महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षा योजनाएं चला सकती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं जनता महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार देकर बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि महिलाओं को निर्णय लेने का मौका मिलेगा तो गांव के विकास की गति और तेज हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि कहा गया है कि नारी का सम्मान बढ़ेगा तो गांव अपने आप विकास की राह देखेगा। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत और जनता मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं गांव में, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।
2: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले बहुत अच्छी बातें चल रही थी कि किस तरीके से पंचायत का महत्व होता है और उसमें जनता की भागीदारी क्यों जरूरी है, यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज गाँवों में पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कुएं सूख रहे हैं, तालाब जो है वो खत्म हो रहे हैं, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। यदि पंचायत और जनता मिलकर प्रयास करे तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: मिलकर किए जा सकने वाले अगर कार्यों के बारे में बात करें जागृति जी, तो श्रोता साथियों, वर्षा जल संचयन हमें करना है, पुराने तालाबों की सफाई हमें करनी है, पेड़ लगाना है, पानी की बर्बादी को रोकना है और खेतों में पानी बचाने वाली तकनीक अपनानी है।
1: जी हाँ,
0: जब गाँव मिलकर पानी बचाने का संकल्प लेता है तब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। कहना चाहेंगे कि कई बार गांव में योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसका कारण जानकारी की कमी और निगरानी का अभाव होता है। यदि पंचायत और जनता जागरूक रहे तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि नशा आज युवाओं को कमजोर बना रहा है। यदि पंचायत नशा विरोधी अभियान चलाए और जनता उसका समर्थन करे तो गांव को नशे से भी मुक्त बनाया जा सकता है। गांव की असली ताकत उसकी एकता होती है। जब लोग जाति धर्म और छोटे छोटे विवादों को भूलकर एक साथ काम करते हैं तब समाज में शांति और विकास दोनों आते हैं। श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि पंचायत यदि निष्पक्ष होकर निर्णय ले और जनता एक दूसरे का सम्मान करे तो गांव में झगड़े कम होंगे और प्रेम बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: आज का समय तकनीक का है। पंचायत यदि डिजिटल सेवाएं शुरू करे और जनता उन्हें सीखने का प्रयास करे तो गांव भी आधुनिक बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि पंचायत और जनता यदि ईमानदारी, सहयोग और जागरूकता के साथ काम करेंगे तो गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और भाईचारे जैसे क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: सच्चा विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं आता श्रोताओं, बल्कि जनता की भागीदारी से आता है। जब हर व्यक्ति ये सोच ले अंजलि कि गांव मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तब विकास की राह आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि पंचायत और जनता एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामे, क्योंकि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं आता श्रोताओं, बल्कि पूरे समाज के मिलकर प्रयास करने से आता है। गांव की शक्ति गांव के लोगों में छिपी होती है।
0: बिल्कुल,
1: जब पंचायत और जनता एक हो जाते हैं तब मिट्टी भी सोना बन जाती है श्रोताओं, और सपने भी हकीकत में बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, आज समाज में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं। जाति, राजनीति और व्यक्तिगत झगड़े गांव की एकता को कमजोर करते हैं। पंचायत और जनता मिलकर आपसी संवाद बढ़ा सकते हैं, सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और विवादों को बातचीत से सुलझा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एकजुट गांव हर संकट का सामना आसानी से कर सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज केवल सरकार बदलने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब होगा जब गाँव आत्मनिर्भर बनेगा, लोग जागरूक होंगे, पंचायत ईमानदारी से काम करेगी, जनता जिम्मेदारी निभाएगी, महिलाएं और युवा जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, विकास में सबकी भागीदारी होगी। जहां जनता केवल मांग करने वाली नहीं बल्कि सहयोग करने वाली बन जाए, वहीं सच्चा स्वराज दिखाई देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि पंचायत और जनता जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब केवल गांव बदलता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है। एकता, मेहनत और जागरूकता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छता हो, शिक्षा हो या विकास, श्रोताओं, हर बदलाव की शुरुआत मिलकर उठाए गए छोटे कदमों से ही होती है। इसलिए हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाएं जहां विकास भी हो, सम्मान भी हो और हर चेहरे पर मुस्कान भी हो।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब लोग मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी की भावना से आगे बढ़ते हैं तब गाँव मजबूत होंगे, समाज जागरूक बनेगा और सच्चे अर्थों में स्वराज का सपना पूरा होगा। क्योंकि विकास तब नहीं आता जब लोग काम करें, विकास तब आता है जब पूरा गांव एक परिवार बनकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी
1: जैसा कि दोस्तों, हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बातें हमारी आपसे होती हैं स्वास्थ्य प्रद विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। मनीषा, बात कर रहे हैं रोज सुबह टहलने के फायदों को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है।
0: जी,
1: और अगर सुबह के समय टहलने की बात करें तो वो तो काफी लाभदायक है श्रोता साथियों। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि सुबह का समय इतना खास क्यों होता है टहलने के लिए, साथ ही सुबह की सैर हमारे शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ बनाती है, ऐसे ही ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करने वाले हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रोज सुबह टहलने के फायदे क्या होते हैं। कोशिश हम देखते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर का उपयोग करना और अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। ऐसे समय में यदि कोई सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकता है, वो है श्रोता साथियों, रोज सुबह टहलना।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: कशिश, हम देखते हैं कि सुबह का समय प्रकृति का सबसे सुंदर और शांत समय माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, हवा ताजी होती है और चारों ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज हमारे मन में आनंद देती है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन सुबह कुछ समय टहलने की आदत डाले तो उसका जीवन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि सुबह की सैर

0: केवल शरीर को ही फिट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का भी एक अच्छा तरीका है। डॉक्टर भी कई बार श्रोता साथियों बीमारी से बचने के लिए रोज सुबह टहलने की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह एक ऐसा व्यायाम है श्रोता साथियों जिसे हर उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं रोज सुबह टहलने की आदत को लेकर
0: जी,
1: तो दोस्तों वैसे तो ये विषय काफी साधारण दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो ये हमारे शरीर, मन और पूरे जीवन को बदल सकता है मनीषा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन समय निकालना उनके लिए वे मुश्किल समझते हैं। कई लोग श्रोता साथियों जिम और कह सकते हैं कि इलाज के पीछे भागते रहते हैं, जबकि आपको बताएं तो अच्छी सेहत की शुरुआत बहुत ही आसान आदतों से ही शुरू होती है। और उन्हीं में से एक आदत सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से टहलने की आदत भी है। श्रोता साथियों सुबह की जो ताजी हवा होती है, पक्षियों की आवाज होती है, हल्की धूप और शांत वातावरण हमारे शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा देते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी कारण से दोस्तों डॉक्टर बुजुर्गों को और बच्चों को भी हमेशा सुबह की सैर को स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताते हैं। हम देखते हैं कि सुबह का समय पूरे दिन का सबसे शांत और शुद्ध समय माना जाता है। इस समय श्रोता साथियों वातावरण काफी शुद्ध रहता है और प्रदूषण भी कम रहता है, साथ ही जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। हम देखते हैं मनीषा कि जब हम सुबह टहलते हैं तो शरीर को ताजी हवा मिलती है जिससे फेफड़े भी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर निरंतर चलने फिरने के लिए बना है। यदि शरीर को पर्याप्त गतिविधियां नहीं मिली तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: आजकल कशिश हम देखते हैं कि मशीनों और आधुनिक साधनों ने लोगों की मेहनत कम कर दी है, जिसके कारण शारीरिक सक्रियता घट गई है। ऐसे में सुबह की सैर शरीर को सक्रिय बनाए रखने में भी मदद करती है। साथ ही हम देखते हैं कि सुबह टहलने से रक्त संचार तेज होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। श्रोता
1: हाँ।
0: साथियों ये आदत व्यक्ति को दिन भर चुस्त और फुर्तीला बनाकर रखती है। साथ ही कशिश हम देखते हैं कि सुबह का वातावरण अन्य समय की तुलना में अधिक स्वच्छ और शांत होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो फेफड़े और हृदय के लिए भी लाभकारी होती है। श्रोता साथियों यही कारण है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अमृत समान मानी गई है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से सुबह की सैर करने के ढेर सारे फायदे होते हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हमारी स्वास्थ्यप्रद बातों की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले हम जान रहे थे कि सुबह का समय काफी खास होता है टहलने के लिए।
1: जी।
0: और गीत से पहले ये भी जान पाए थे कि सुबह का समय जब हम टहलते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक मिलती है। इसी के साथ अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो सुबह की सैर केवल शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी तरोताजा करती है। मनीषा, ये समय आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और साथ ही नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए जरूरी माना जाता है।
1: जी हाँ।
0: हम देखें तो गांव में तो अक्सर लोग सूर्योदय से पहले ही उठकर खेतों की ओर निकल जाते हैं श्रोता साथियों। वे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: देख सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका प्रकृति से जुड़ा रहना और नियमित चलना फिरना।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम देखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन में यह आदत हमारे अंदर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में श्रोता साथियों, हम सभी को अपने जीवन शैली में सुबह के सैर की जो आदत है उसे जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह टहलना शरीर को चुस्त और सक्रिय बनाता है। जब हम चलते हैं साथियों, तो शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में नई ऊर्जा आती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि अगर हम सुबह टहलते हैं या सुबह की सैर करते हैं तो इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह किस प्रकार लाभकारी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, हम देखते हैं कि इससे हमारा तनाव कम होता है।
0: जी हाँ।
1: हमारी सोच है वो सकारात्मक होती है। साथ ही श्रोता साथियों, अवसाद से भी हमें राहत मिलती है। हमारी याददाश्त है वो भी तेज होती है। साथ ही हमारा आत्मविश्वास भी कशिश बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में सुबह की सैर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और पढ़ाई में भी मन लगता है।
0: बिल्कुल।
1: उनकी याददाश्त तेज होती है, पढ़ाई में एकाग्रता की शक्ति है वो भी बढ़ती है। साथ ही आलस्यता कम होती है, मानसिक थकान दूर होती है और परीक्षा का तनाव है वो भी कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जो विद्यार्थी नियमित सुबह टहलते हैं कशिश, वे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथ ही अगर बुजुर्गों की बात करें मनीषा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र में शरीर हमारा कमजोर होने लगता है। ऐसे में साथियों, जोड़ों में दर्द, थकान और सुस्ती जैसी समस्याएं बुजुर्गों में बढ़ जाती है।
1: जी हाँ।
0: अगर वे सैर की आदत को अपनाते हैं तो दोस्तों, ऐसे समय में हल्की सुबह की सैर उनके लिए काफी लाभदायक होगी।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि नियमित चलने से शरीर सक्रिय रहता है और बुजुर्ग खुद को अधिक आत्मनिर्भर भी महसूस कर पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो पार्कों में एक साथ टहलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, इससे उनका अकेलापन दूर होता है। अगर बात करें बच्चों और युवाओं की, तो आज बच्चों का अधिक समय मोबाइल और टीवी में ही बीत रहा है मनीषा। खेलकूद कम होने से उनका शारीरिक विकास इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, यदि बचपन से ही सुबह उठने और टहलने की आदत बच्चों में डाली जाए तो बच्चे अधिक स्वस्थ, अनुशासित बन सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही युवाओं के लिए भी सुबह की सैर जरूरी है, क्योंकि ये उनकी ऊर्जा बढ़ाती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, साथ ही उनका आत्मविश्वास भी मजबूत करती है।
1: जी हाँ कशिश। साथ ही हम देखते हैं कि जब लोग पार्क और खुले स्थानों में टहलने जाते हैं तो उनका प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो महत्व है वो भी वो समझ पाते हैं। इससे पेड़ पौधे और स्वच्छ वातावरण के प्रति भी लोग जागरूक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरियाली से भरे स्थानों में सैर करने से हमारा मन अधिक प्रसन्न होता है। साथ ही कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रोज सुबह टहलना एक अत्यंत लाभकारी आदत है।
0: बिल्कुल।
1: यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और शरीर को संतुलित बनाती है। सुबह की सैर न केवल बीमारियों से बचाव करती है श्रोता साथियों, बल्कि व्यक्ति के विचारों में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। सुबह की सैर किसी महंगे साधन या विशेष स्वास्थ्य की मांग नहीं करती, केवल इच्छा शक्ति और नियमितता की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, यदि हम प्रतिदिन सुबह कुछ समय प्रकृति के बीच टहलने की आदत बना लें तो हमारा जीवन अधिक सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बन सकता है। वास्तव में कशिश, हम देखते हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य का सबसे सरल और प्राकृतिक मंत्र है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सुबह की सैर एक छोटी आदत जरूर है
1: जी,
0: लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। ये शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को अनुशासित बनाती है। ऐसे में दोस्तों, महंगी दवाइयां और इलाज से बेहतर है कि हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, कुछ समय प्रकृति के बीच चलना। ये सभी चीजें हमें नई ऊर्जा देगी।
1: जी हाँ
0: मनीषा, यदि हम अपने परिवार, बच्चों और समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो साथियों, सुबह की सैर को जीवन का हिस्सा हमें बनाना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके, ये हमारी आदतों से बनता है। श्रोता साथियों, रोज सुबह की थोड़ी सी सैर आने वाले समय में हमें कई बीमारियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ,
0: कल से नहीं बल्कि आज से शुरुआत आप करिए। सुबह उठिए, खुली हवा में जाइए, कुछ कदम चलिए और अपने जीवन में नई ताजगी को अपनाइए।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहें, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तु देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।